मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। हेमंत कुमार का संगीत था। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना फिल्म का नाम दुनिया झुकती है, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में। और अब सुनते हैं ये संदेशात्मक गीत।

किशोर कुमार की आवाज से सजी ये सुंदर संदेशात्मक रचना अभी आपने सुनी इम्तिहान फिल्म से। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी माया फिल्म से, 1961 रिलीज ये फिल्म। सलील चौधरी का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। आइए अब ये सुनते हैं

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी और अब प्रस्तुत है आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

पंडित जसराज के स्वर से सजी ये रचना आपने सुनी। ये थी आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। और अब भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सुरक्षा
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें।

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज रेडियो पर सिर्फ आवाज नहीं, दो दोस्तों की केमिस्ट्री सुनाई देने वाली है।
1: जी हाँ, और केमिस्ट्री भी ऐसी जिसमें फॉर्मूला कोई नहीं है। कब क्या हो जाए, जेडी को खुद पता नहीं है। वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, और सुबह के 10:06, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स।
0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी, और मेरे साथ है,
1: मैं हूँ आरजे निशा।
0: जी हाँ, तो बातें होती है डबल।
1: मस्ती भी होंगी डबल। और अगर जेडी ने ज्यादा बोलने की कोशिश की
0: तो
1: माइक मेरा ऑफ
0: अरे
1: कोर्स,
0: वाह, पहले ही मिनट में मेरा शो छीन लिया।
1: क्योंकि दोस्तों ये है वो शो जहां दोस्ती में थोड़ी सी टांग खिंचाई होगी, थोड़ी सी नोकझोंक भी होगी और बहुत सारी मस्ती।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी कंपनी होगी।
1: जी हाँ, और हम दोनों बड़ी आज यहाँ पर एक बड़ी शो करने वाले हैं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बड़ी यहाँ पर आ चुका है, आरजे बड़ी।
0: जी हाँ, मुझको पहचान लो, मैं हूं
1: ऑफ
0: कौन?
1: कोर्स, आरजे जड़ी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के शो को, और आपको लिए चलते हैं सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ, एंड उसके बाद फिर से एक बार हम जुड़ेंगे अपनी थोड़ी बहुत नोकझोंक के साथ, थोड़ी बहुत बातों के साथ। सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

0: स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:14 और 10 सेकेंड। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और मैं हूं निशा आपके साथ। और मेरे साथ, जैसा कि मैंने बताया, और भी कोई है, मेरे आरजे बड़ी
1: आरजे जेडी,
0: जी।
1: नमस्ते।
0: हाँ,

0: जेडी हैं हमारे साथ। एंड यस, ये जो नमस्ते हेलो आदाब का सफ़र रहेगा हर रोज़ की तरह बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ बातें होने वाली हैं, कुछ सॉन्ग्स होने वाले हैं, तो कुछ बहुत ही कमाल के हिंदी सॉन्ग्स और साथ में कुछ वेस्टर्न हिट्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं, बिकॉज़ इट
1: आपने
0: विल
1: एक
0: बी।
1: मिस कर दिया,
0: हाँ जी बताइए क्या।
1: टांग खिंचाई
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल,
1: है।
0: टांग खिंचाई भी होने वाली है। वेल ओके, तो आई थिंक हमारे लिसनर्स इन सब का एक हिस्सा होने वाले हैं। एंड अगर आप हमें कुछ मैसेज भेजना चाहते, कुछ सलाह, क्योंकि ये हमारा पहला आरजे बड़ी शो होने जा रहा है, या फिर ऐसा कह सकते कि हो रहा है, तो अगर आपके भी कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 4023234822। एंड यस, इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड वेस्टर्न हिट्स। सो ये जो सेगमेंट है, यहाँ पर कुछ वेस्टर्न हिट्स भी हम बजाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना।
1: एक मिनट निशा
0: जी
1: जी, फिर से आपने कुछ मिस कर दिया।
0: अच्छा
1: हिंदी और वेस्टर्न हिट्स तो बोल ही दिया,
0: अच्छा
1: स्वीट और नमकीन का।
0: अच्छा स्वीट और नमकीन। अच्छा
1: हाँ, स्वीट यानी कि मैं तो बिल्कुल नहीं। स्वीट यानी कि आप, और नमकीन यानी कि मैं।
0: अच्छा अच्छा ओके, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने बताया कि आप मेरी थोड़ी सी टांग खिंचाई करने वाले हैं, बट कोई नहीं, चलो वो भी चलता है,
1: सीक्रेट
0: कभी कभी
1: पार्ट है।
0: लाइफ है।
1: जी
0: ओके
1: हाँ,
0: ऐसे भी लोग हमें मिलने चाहिए। एंड यस, फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

0: Well, it's 23 past 10 by the studio clock. A very, very good morning, dear listeners. आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद एफ एम रेनबो 101.9। और आज का जो दिन है ना वो ऑफकोर्स आपके लिए तो स्पेशल होगा ही। कुछ ना कुछ हम सब की ज़िंदगी में स्पेशल चलते रहता है, और ख़ास करके आज मेरे लिए और आरजे जेडी के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि आज है हमारा पहला बड़ी शो।
1: जी हाँ दोस्तों, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, यानी कि हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, और मैं सोचता हूँ कि आप सब भी एक्साइटेड हैं। तो क्या
0: जी
1: बोलते हो
0: हाँ,
1: निशा जी?
0: बिल्कुल एक्साइटेड है। ऑफ कोर्स हम तो ऐसा कह सकते हैं कि हम थोड़े से नर्वस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला बड़ी शो है, बट हमारे लिसनर्स तो फुल ऑन एक्साइटेड हैं।
1: जी हाँ, मुझे हमारे लिजनेस पे बहुत भरोसा है, और आप तो जानते ही हो हमारे लिजनर्स हमको कितना प्यार देते हैं यार।
0: जी हाँ, बिल्कुल हर रोज़ वही प्यार एंड यही खूबसूरती है एफएम रेनबो के लिसनर्स की, कि हर रोज़ यहाँ पर एक नया

0: आरजे होता है. इनफैक्ट हर एक ट्रांसमिशन में एक नया आरजे होता है और वो सबके लिए ही उतना प्यार बचा कर रखते हैं हर एक आरजे के लिए. सो दिस इज यू नो वेरी वेरी आई फील वेरी प्रिविलेज समटाइम्स कि
1: जी हाँ, और एक आरजे यानी कि वो तो अपना पूरा प्यार देता ही है अपने लिसनर्स को, अभी तो दो आरजे हैं यानी कि डबल प्यार और डबल मज़ा।
0: जी. सो ओके जेडी, सो बिफोर वी गेट इन टू एनी थिंग एल्स आई हैव अ लिटिल पजल फॉर यू.
1: सुबह सुबह यार पजल, चलो कोई नहीं बताइए।
0: जी तो आज जेडी, वैसे तो यहाँ पर हमेशा मैं अकेली ही रहती हूँ तो कभी मुझे पजल पूछने का मौका नहीं मिला. तो आज आप यहाँ पर है तो मैं एक चीज़ पूछती हूँ आपसे कि क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और ठंड लगे तो उसे जलाया भी जा सकता है?
1: आपको क्या लगता है निशा जी, आप हमारे लिजनर्स के सामने मुझे टेस्ट करना चाहती है?
0: बिल्कुल
1: अरे हम
0: बिल्कुल.
1: कोई कम नहीं, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है यार,
0: अच्छा तो बताइए.
1: सबको पता है इसका आंसर, वो है नारियल।
0: ऑफ कोर्स, यस. वेल दैट वाज वे टू इजी.
1: और निशा, आपने पजल ही इतना सिंपल पूछा है, इसका आंसर तो नर्सरी के बच्चे भी दे देंगे।
0: ओके ओके, सो आई प्रॉमिस आई विल कम अप विद अ हार्ड वन नेक्स्ट टाइम. बट
1: देखा जाएगा।
0: एक्चुअली देयर इज अ रीजन आई आस्क्ड यू दिस टुडे.
1: अच्छा, रीजन क्या रीजन है?
0: वेल टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कोकोनट डे.
1: ओ हो, तो नारियल का भी दिन है अभी।
0: जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड ऑनेस्टली जेडी, द मोर यू लर्न अबाउट कोकोनट द मोर यू रियलाइज कि नारियल सिर्फ किचन में पड़ा हुआ एक फ्रूट नहीं है.
1: हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि नारियल को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता था, मैंने किसी बुक में पढ़ा था।
0: जी बिल्कुल, नारियल को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. एंड देयर इज सो मच. देखिए कोकोनट ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका ऑलमोस्ट हर पार्ट यूजफुल होता है. सबसे पहले कोकोनट वाटर जो कि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, फिर कोकोनट का जो फ्लैश है यानी कि उसके अंदर का वाइट पार्ट उसे भी खा सकते हैं, और कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम और कोकोनट ऑयल जिससे बहुत कुछ बनता है ऑफ कोर्स.
1: नहीं निशा जी, एक चीज है मेरे ख्याल से, उससे शायद कुछ नहीं होगा, वो है हस्क, उससे क्या हो सकता है यार।
0: अरे हस्क का भी बहुत सारा इस्तेमाल है वो भी वेस्ट नहीं है. उससे कॉयर फाइबर मिलता है जिससे रोप्स, मैट्स, ब्रशेस और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं.
1: अच्छा, कॉयर, ओके ओके, आई गॉट इट। मतलब नारियल खाया और पानी पिया और छिलका भी काम आ सकता है।
0: एग्जैक्टली.
1: तो फिर नारियल का पेड़ पेड़ कम पूरी फैक्ट्री ज्यादा लगती है यार।
0: दैट्स एग्जैक्टली अ वेरी गुड वे टू पुट इन. एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई द कोकोनट पाम इज पॉपुलरली कॉल्ड द ट्री ऑफ लाइफ. जी हाँ, तो ऑफकोर्स इतना कुछ हम जानते हैं नारियल के बारे में, तो आई थिंक हमारे कोई ना कोई लिसनर तो एक दो नारियल आज घर ले ही आएंगे खरीद कर,
1: और मैं एक
0: पक्का.
1: बात बोलना चाहता हूँ,
0: जी
1: आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात भूल गई, नारियल के साथ डेजर्ट्स भी बनते हैं यार।
0: अच्छा,
1: आई एम सो
0: डेजर्ट्स.
1: सॉरी, अभी यहाँ पर आरजे जेडी है तो खाने की बातें और ट्रैवलिंग की बातें तो होती ही रहेंगी, क्योंकि
0: ओके
1: मुझे
0: okay.
1: खाना बहुत पसंद है।
0: तो चलिए डेजर्ट कौन कौन सी है उसकी भी हम बात करेंगे,
1: जी हाँ।
0: लेकिन उससे पहले क्योंकि ये एक म्यूजिकल जर्नी है तो हम फिलहाल चलेंगे म्यूजिक की तरफ.
1: यहाँ पर आपका फेवरेट बजेगा या मेरा?
0: चलिए इस बार आपके फेवरेट के साथ चलते हैं.
1: मैं बताऊं, लिजनर्स का फेवरेट
0: अच्छा,
1: यार।
0: लिसनर्स का फेवरेट. ऑफ कोर्स, तो लिसनर्स का फेवरेट बजे उसके लिए तो लिसनर्स को हमें मैसेज भेजने पड़ेंगे, और मैंने आपको बताया कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. नंबर है 4023234822. एंड एक्चुअली एक मैसेज यहाँ पर आ भी चुका है. सरवर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग टू यू टू.
1: और यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूपा फ्रॉम मलकाजगिरी, और ये कहते हैं आप दोनों का शो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, और ऑल द बेस्ट आप दोनों को। और यहाँ पर देखिए तो सॉन्ग का रिक्वेस्ट भी आ गया है, फ्रॉम, ये कहती है प्लीज प्ले ब्यूटिफुल पीपल फॉर यू यू एंड ऑल द ब्यूटिफुल लिसनर्स। वाओ,
0: ओके चलिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है एंड थैंक यू सो मच. तो फिलहाल के लिए हम इसी सॉन्ग की तरफ चलते हैं. क्यों
1: जी
0: जेडी?
1: जरूर।
0: Okay, so yes, it's 29 past 10 by the studio clock. Dear listeners, you are listening to Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9 और आप जहाँ कहीं भी हो, I hope कि आप इस शो को enjoy कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, क्यों ना. और

0: एक बात और ये भी है कि आप जहां कहीं भी हो आप हमारा शो सुन सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स ऑन एयर न्यूज़ ऑन एयर ऐप की मदद से. फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ेंगे एंड
1: एक मिनट, रेनबो के साथ लाइफ
0: लाइफ
1: है रंगीन।
0: रंगीन बिल्कुल.
1: जी
0: एंड फिलहाल के लिए एक सॉन्ग जो रिक्वेस्ट आई थी, इट्स ब्यूटिफुल पीपल बाय एड शीरन, तो उसी की तरफ फिलहाल हम चलते हैं. सुनते रहिए ये है एफएम रेनबो 101.9 और हम हैं आपके साथ
1: आज जे डी और
0: आरजे निशा.
1: टेक इट अवे।
0: ओके, थैंक यू सो मच.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और निशा, हमारी कोकोनट वाली कहानी अभी कंटिन्यू हो रही है।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। इट्स 37 मिनट्स पास 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और यहाँ हम बात कर रहे थे कोकोनट की, क्योंकि आज है वर्ल्ड कोकोनट डे। जी हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की मैंने और आरजे जेडी ने। लेकिन जैसा कि आरजे जेडी ने कहा कि अभी कोकोनट की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने पहले कहा था ना, कोकोनट ट्री को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है।
0: जी हाँ, लेकिन निशा मुझे एक बात बताओ, एक सवाल है मेरा।
1: बताइए क्या।
0: हमने फ्रूट, वाटर, फ्लैश और हस्क के बारे में तो बात कर ली,
1: जी,
0: लेकिन पूरी पेड़ कितना यूजफुल है?
1: वेल, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। यू नो, आप कोकोनट ट्री को देखिए, इसका फ्रूट तो ऑब्वियसली सबसे फेमस है, कोकोनट वाटर, जो कि एक रिफ्रेशिंग नेचुरल ड्रिंक है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। कोकोनट मील, जो कि फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है, कोकोनट मीट, और कोकोनट मिल्क क्रीम और उसका ऑयल, जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है।
0: जी हाँ, ऑयल, कोकोनट ऑयल तो हमारे घरों में सदियों से यूज होता है। हमारी नानी और दादी तो कहते हैं, थोड़ा सा चोट लग जाए नारियल का तेल लगा दो, अगर ठंडा ठंड का मौसम आ जाए नारियल का तेल लगा दो, होंठ फूट रहे नारियल का तेल लगा दो, कुछ भी हो जाए नारियल का तेल लगा दो, क्योंकि वो स्किन को ना बहुत मॉइस्चराइज करता है।
1: जी बिल्कुल, और नारियल का तेल यूज़फुल तो है ही, लेकिन उसके बाद आता है उसका हस्क, जो हम हमेशा सोचते हो कि यूज़फुल नहीं है, यानी कोकोनट का फाइबरस आउटर कवरिंग। इसे कॉयर फाइबर मिलता है, पता है आपको?
0: और कॉइल से रोप्स एंड मैट्स भी बनती है।
1: जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया,
0: जी हाँ।
1: जो हम यूजुअली यू नो कभी कभी कचड़े में डाल देते हैं, और वही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यू नो, शेल से चारकोल, हैंडीक्राफ्ट्स, बॉल्स और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जैसे बहुत से आइटम्स बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, अभी हमको कैसे पता होता है और हमारे लोगों को और सभी लोगों को कैसे पता होता है कि इससे बनते हैं, क्योंकि ये सब तो रिसाइकिल के जो करने वाले होते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं और फैक्ट्रीज में भेज देते हैं ना।
1: जी बिल्कुल, और यू नो कोकोनट लीव्स का भी बहुत सारा यूज़ है। कोकोनट लीव्स का यू नो ट्रेडिशनल यूज़ किया जाता है रूफिंग के लिए, वीविंग के लिए, बास्केट्स और हैंडीक्राफ्ट्स में भी इसका यूज़ होता है। आपने पहले देखा होगा कि कोकोनट लीव से हम अपनी घर के छत को कवर
0: जी
1: करते
0: हाँ,
1: थे।
0: गांव में हम देखते हैं। अभी यहाँ शहर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को कहाँ से पता होगा, और आजकल के जनरेशंस को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। क्या कहते हो?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। एंड यस, तो आई थिंक एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि नारियल का जो पेड़ है वो शायद हमसे कभी कभी कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी वेस्ट नहीं है, तुम्हारे पास क्या है। वेल
0: जी, अच्छा जी,
1: जी
0: आगे पता चलेगा वो तो।
1: बिल्कुल, और आई थिंक बहुत सारे डेजर्ट्स भी बनाए जाते हैं कोकोनट
0: जी
1: से, तो उसकी
0: हाँ।
1: भी बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि आई थिंक हमारे बहुत सारे लिसनर्स इंटरेस्टेड भी होंगे इसमें।
0: जरूर, और नारियल का भी एक बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट है, पता है? उसका नाम है कोकोनट पैनाकोटा।
1: ओके, नाइस नेम
0: जानते
1: आल्सो।
0: हो, ये इटालियन डिश है
1: ओके,
0: और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं। इसका नाम तो बड़ा ही एकदम अतरंगी सा लगता है, लेकिन बहुत ही इजी डिश है यार निशा इसका तो।
1: ओके, तो इसके बारे में तो आपको ऑब्वियसली शेयर करना ही चाहिए
0: जरूर
1: कि ये
0: जरूर,
1: कैसे बनता है।
0: इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए पड़ते हैं फ्रेश क्रीम, कोकोनट मिल्क पाउडर, रॉ कोकोनट पीसेस, ग्लूटीन या नहीं तो अगर अगर पाउडर, सो दैट यू नो जेलेटिन होता है वो, और वेनिला एसेंस, वो ऑप्शनल है।
1: ओके,
0: तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको बस क्रीम को और कोकोनट मिल्क को हल्के से गर्म करना है, उबालना नहीं है आपको,
1: ओके,
0: बस थोड़ा हल्के से गर्म करना है, और आपका जेलेटिन का पाउडर मिक्स बनाना होगा और इसमें मिक्स करना है आपको,
1: ओके,
0: और उसके बाद हल्का सा ऑप्शनल वेनिला एसेंस होता है उसको आप ऐड करो, और ऊपर से जो कोकोनट के चंक्स होते हैं छोटे छोटे जो टुकड़े, वो जब मुंह में जब घुलते हैं ना बहुत मस्त लगता है यार, और इसको आप डाल दो एक मोल्ड में, और इस उसके बाद आप एक 2 घंटा के लिए इसको रिफ्रिजरेट कर दो। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट तैयार हो गया, इतना
1: वाह,
0: सिंपल।
1: ये सुन के ही बहुत टेस्टी लग रहा है। और आपने जब कोकोनट के छोटे छोटे चंक्स की बात की तो मुझे याद आ गया कि अगर हम ताज़े नारियल को अगर रोस्ट भी कर देते हैं
0: जी
1: तो वो भी बहुत अच्छा
0: जी
1: लगता है।
0: हाँ
1: एंड यस, इसी के साथ हमारी बातें जो है वो तो जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आप हमसे अगर जुड़ना चाहें तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर दो दो आरजेज हैं स्टूडियो में आज जो और दोनों ही आपका मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सरवर अली जी तो जुड़े ही हुए थे, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक जी। तो आपका मैसेज हम ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि बातें यहाँ पर काफ़ी हो चुकी हैं। और फिलहाल के लिए हम चलने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, जो है आरजे जेडी का पसंद का।
0: जी हाँ दोस्तों, और मुझे लगेगा कि आप सभी को भी पसंद आएगा। एंड क्यों नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मेरी पसंद आप सबकी पसंद ही तो है।
1: एंड ये है कॉफ़ी बार फुल सॉन्ग। एंड आपने बहुत बार ये सॉन्ग सुना होगा, देखा है तेरी आंखों में, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स एवर। व्हाट डू यू से? चलिए, ये तो सुन के ही पता चलेगा। तो सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9।
0: रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।
1: जी हाँ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूँ आरजे जेडी और मेरे साथ है आरजे निशा। तो दोस्तों चलिए हम अपना सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और इसी ब्यूटीफुल थॉट्स एंड सॉन्ग्स के साथ कोकोनट डे की बातें यहीं पर थोड़ा पॉज करते हैं।
1: ओके आरजे जेडी, वेल कोकोनट डे के बारे में तो हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन एंड कर रहे हैं, लेकिन आज का जो दिन है यानी 2nd of September, ये सिर्फ वर्ल्ड कोकोनट डे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है।
0: बिल्कुल, आज की डेट हिस्ट्री की एक बहुत बड़े चैप्टर से भी जुड़ी हुई है, ऐसा चैप्टर जिसमें दुनिया ने एक बहुत पेनफुल लेसन सीखा और वो है वर्ल्ड वॉर 2।
1: एग्जैक्टली 81 ईयर्स अगो 2nd of September 1945 को क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं।
0: जी हाँ, तो निशा अभी तक कोकोनट के बारे में तो बातें बहुत हुई है, अभी थोड़े सा अपना इमोशन चेंज हो जाएगा अभी यहाँ पर आते ही, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू इतने इतने मतलब इमोशनल हादसे हुए हैं, इतना सारा स्टोरी बना है वहाँ पर हमारी हिस्ट्री में, और 2nd सितंबर 1945 इसी

0: दिन जापान ने फॉर्मली सरेंडर किया था और वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली एंड हुआ था, पता है?
1: यस डियर लिसनर्स, एंड व्हेन वी हियर द वर्ड वर्ल्ड वॉर टू हमारे दिमाग में इमिडिएटली बैटल्स, सोल्जर्स, कंट्रीज विक्ट्री डिफीट ये सब आता है.
0: जी हाँ, लेकिन निशा, मुझे लगता है कि वॉर को समझने के लिए सिर्फ बैटलफील्ड देखना काफी नहीं होता।
1: एग्जैक्टली जयदीप, बिकॉज बिहाइंड एवरी वॉर देर आर ऑर्डिनरी पीपल. एक माँ जो शायद अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, एक बच्चा जो समझ भी नहीं पा रहा था कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है, शायद एक फैमिली जो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी.
0: और एक सोल्जर जो शायद खुद नहीं पता कि वो घर वापस लौट पाएगा या नहीं।
1: एंड यस, दैट्स द पार्ट वॉज यू नो दैट्स द पार्ट वी समटाइम्स फॉरगेट. वॉर्स जो है ना, ये मैप्स पर कंट्रीज के बीच होती हैं, लेकिन उसका जो दर्द है वो घरों के हर घर के अंदर पहुंचता है.
0: जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। ये भले ही मैप्स में हमें दिखाई देती है, लेकिन वो चीज़ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है जो हमारे मतलब इंसानों के दिलों के अंदर होती है, परिवारों के अंदर होती है। और जी हाँ, हर किसी को ये बहुत इफेक्ट करता है। और 2 सितंबर 1945 को जब सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, तो एक टेरेबल चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो गया था, एक ऐसी राहत। और हिस्ट्री में हमें ये भी बताती है कि वॉर खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके सारे वोन्ड्स इमीडिएटली हील हो जाते हैं।
1: जी हाँ, कुछ जख्म बॉडी पर दिखते हैं और कुछ बॉडी यू नो माइंड के अंदर भी कुछ जख्म हो जाते हैं, और शायद कुछ जेनरेशंस, बहुत सारी ऐसी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की जेनरेशंस इफेक्ट हो जाती है उस वॉर के बाद.
0: जी हाँ, क्योंकि जब एक वॉर होता है तो सिर्फ इंसान या परिवार इनको इफेक्ट नहीं करता है, ये पूरी पीढ़ी को इफेक्ट कर देता है। पूरी की पूरी पीढ़ी और पूरी की पूरी जात नस्ल सबको इफेक्ट कर देता है।
1: इसीलिए दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि पीस कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर कोई झगड़ा हो, चाहे एक घर का छोटा सा झगड़ा, है ना. एंड इसीलिए अपने ईगो को ना कभी भी जब झगड़ा हो तो बीच में नहीं आने देना है. और यस, इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय हमारे पास बहुत कम है. 11 बजे आप सुन पाएंगे कुछ और नमस्ते हेलो आदाब के अलावा. तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, और उसके बाद फिर से एक बार हम लौटेंगे.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। स्टूडियो में 11:05 हो रहे हैं और अभी तक हमने न्यूज़ सुना है तेलुगु में। और अभी हम हमारे म्यूज़िकल जर्नी के साथ साथ हमारी बातों की जुगलबंदी को हम शुरू करते हैं। और चलिए, तो निशा जी, स्वागत है हमारे लिसनर्स का।
1: हाँ बिल्कुल, अपना खुद का खुद से स्वागत तो नहीं कर सकते जो ऑलरेडी हमने कर लिया, अब दोबारा से नहीं करेंगे।
0: जी हाँ,
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:06, यानी हम हैं ऑलरेडी नमस्ते हेलो आदाब के इस खूबसूरत सफ़र में। एंड आज का जो शो है ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज है मेरे साथ मेरे आरजे बड़ी। एंड आई थिंक वो इंसान ना बहुत लकी होता है जिसके पास एक बड़ी होता है। तो आज मेरे पास देखिए मैं कितनी लकी हूँ कि आज मेरे साथ मेरे आरजे बड़ी है।
0: जी हाँ, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारी खुशी अकेली होती है और हमारी उदासी भी अकेली होती है, और
1: बिल्कुल
0: जब हम किसी के साथ होते हैं तो खुशी डबल हो जाती है और दुख आधा हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स के साथ। निशा जी, एक चीज नोटिस किया है आपने?
1: क्या?
0: जैसे ही जन्माष्टमी आने वाली होती है ना, पूरा माहौल ही थोड़ा अलग सा लगने लगता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, हमारे बाहर जो चल रहा होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है और हमारे मन के अंदर भी एक अलग सी शांति हो जाती है। तो दोनों वे में एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारा पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलता है।
0: जी हाँ, क्योंकि अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है 4 तारीख को, और मंदिरों में तो तैयारी शुरू हो चुकी है। घरों में कृष्ण जी की मतलब सब सजावट सब शुरू हो चुकी है।
1: एंड पता है चेड़ी, बच्चे तो कान्हा बनने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, छोटी
0: जी
1: सी
0: हाँ
1: बांसुरी, मोर पंख और वो छोटा सा कॉस्ट्यूम। और जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज है, मुझे काफी अच्छा लगता है उन्हें देख के कि एक प्यारी सी कॉस्ट्यूम और उन्हें कान्हा बनाया जाता है, राधा
0: जी
1: जी बनाया जाता है। सो दैट इज वेरी लवली।
0: जी और यहाँ हमारे इंडियन कल्चर में तो एक ऐसे मतलब एक ट्रेडिशन जैसे बना दिया है कि हर छोटे बच्चे को कान्हा जरूर बनाते हैं। आप और हम भी कभी तो कभी ना कभी तो बने ही होंगे, क्या कहते हो?
1: एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो देर इज समथिंग सो ब्यूटिफुल अबाउट लॉर्ड कृष्णा। ही इज लव्ड नॉट जस्ट एज अ गॉड बट एज अ चाइल्ड, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। और शायद इसीलिए हर इंसान उनसे किसी ना किसी तरह कनेक्ट कर पाता है।
0: जी हाँ, क्योंकि किसी ना किसी के लिए वो सिर्फ एक नन्हे कान्हा है, और किसी के लिए लड्डू गोपाल,
1: बिल्कुल
0: किसी के लिए राधा का श्याम, और किसी के लिए वो दोस्त है जो मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं।
1: बिल्कुल सही। और पता है जयदीप, मुझे ना ठाकुर जी की एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो है उनकी टीचिंग्स। उनकी टीचिंग्स सिर्फ मंदिर तक लिमिटेड नहीं है, वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
0: जी जी बिल्कुल सच कहा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, अपना कर्म करते रहो बिना हर वक्त रिजल्ट का टेंशन लिए। ये उनका हमेशा का एक स्टेटमेंट रहा है जो था, कर्मण्येव वदिकारस्ते। इसका
1: जी
0: मतलब यही है कि आप बस काम करते रहो, रिजल्ट का टेंशन मत करो, रिजल्ट का उन पर छोड़ दो।
1: बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं और हमने रिजल्ट लिसनर्स पर छोड़ दिया है कि भाई आप डिसाइड करो कि हमारा ये जो कॉम्बो है ये आपको कैसा लग रहा है।
0: जी हाँ
1: बातें काफी हो चुकी हैं, मुझे लगता है ना हमें एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए अभी, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बोर ना हो। वैसे
0: मुझे
1: तो
0: नहीं लगता वो बोर होएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डबल मस्ती चल रही है, डबल धमाल। खैर ठीक है, अभी आप बोलते ही हैं तो हम

0: पर आरजे बड़ी शो।
1: जहां पर मैं हूं आरजे जेडी। और
0: मैं हूँ आरजे निशा।
1: तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे जर्नी को।
0: और साथ ही आई थिंक बातों का सिलसिला भी। और बातों के सिलसिले की बात करें तो यहाँ पर एक मैसेज हमें रिसीव हुआ है व्हाट्सएप पर। मैंने आपको कहा था कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 4023234822। तो यहाँ पर हमारे एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड दिस इज़ दीप। लिखते हैं, हाय दिस इज़ दीप फ्रॉम बैंगलोर एंड एज़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर टू विच एंडेड ऑन दिस डे विद द सरेंडर ऑफ जापान, आई रिमेंबर्ड अ ब्यूटिफुल एनिमेटेड मूवी विच एवरी वन शुड वॉच विच इज़ ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज विच रिलीज्ड इन द ईयर 1988। अ वेरी इमोशनल एंड पेनफुल मूवी विच शोज़ द डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ वॉर स्पेशली ऑन इनोसेंट चिल्ड्रेन। डेफिनेटली अ मस्ट वॉच फॉर एवरी वन। और यहाँ तो मैं भी कहना चाहूँगी कि मेरे मुँह की बात छीन ली इन्होंने, क्योंकि ग्रेव ऑफ द फायर फ्लाइज मैंने भी देखी है एंड आई थिंक वो मूवी देख कर ना मैं मूवी शुरू होती है और मैं रोना चालू करती हूँ और एंड तक मैंने रोया है उस मूवी को देख कर। एंड आई थिंक वो मूवी ना हमें तब तब देखनी चाहिए जब जब हम लाइफ में अनग्रेटफुल हो जाएं। वो मूवी हमें मौका देती है ग्रेटफुल होने का।
1: बिल्कुल सही कहा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए निशा, क्योंकि मैंने भी वो मूवी देखी है और मैं उसको दोबारा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है रो रो के। इतना इमोशनल मूवी है वो।
0: ऑब्वियसली, और वहाँ पे दो बच्चे हैं मेन रोल में, बट मैं चाहती हूँ, एनिमेटेड मूवी है बट मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई बच्चा उस मूवी को देखे स्पेशली, यू
1: जी
0: नो,
1: हाँ
0: क्योंकि बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी आप अनग्रेटफुल फील कर रहे हो ना तो आप ये मूवी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक बार ज़रूर देखना।
1: थैंक यू सो मच दीप जी, आप बैंगलोर से हमें सुन रहे हैं और बहुत ही शुक्रिया आपका।
0: ओके, सो यस, हम चालू करते हैं अपने बातों का सिलसिला। सो यू नो जेडी, हम बात कर रहे थे जन्माष्टमी की और कृष्णा जी की जो स्टोरी है उसमें मुझे एक और चीज़ बहुत पावरफुल लगती है।
1: कौन सी बात
0: उनकी लाइफ में ना सब कुछ परफेक्ट नहीं था, जैसे हमारी लाइफ में ऑफ कोर्स परफेक्ट
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: रहता।
1: एग्जैक्टली बचपन में ही उन्हें ना अपना बायोलॉजिकल पेरेंट्स से दूर होना पड़ा, फिर वृंदावन की ज़िंदगी, और बाद में वृंदावन को भी छोड़ना पड़ा और मथुरा जाना पड़ा उन्हें।
0: एग्जैक्टली, और फिर लाइफ में एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग कृष्णा जी ने अपनी सर्कमस्टांसिस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दी। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जहाँ उन्हें अपनी पसंदीदा चीज़ों का त्याग करना पड़ा।
1: जी हाँ, और इतना हमें एक इंस्पिरेशनल मैसेज मिलता है कि हमको बस कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भगवान रहकर भी उनकी लाइफ,
0: जी
1: उनकी ही लाइफ इतनी स्ट्रगल थी,
0: जी
1: हम तो यार आफ्टर ऑल इंसान हैं।
0: बिल्कुल, बट फिर भी पता नहीं क्यों हम कैसे अनग्रेटफुल हो जाते हैं हमेशा। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कभी लोग बोलते हैं मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए।
1: जी हाँ, और फिर हम भूल जाते हैं कि सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स हमारे हाथ में होता है।
0: जी बिल्कुल, कृष्णा जी जैसे कि उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना।
1: जी
0: प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लेकिन हमें ये तय करना है कि हमें उसको कैसे डील करना है, पॉजिटिवली या नेगेटिविटी के साथ।
1: जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मैटर करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, हर किसी भी बात को।
0: और इसीलिए शायद ठाकुर जी की स्टोरी ना आज भी रेलेवेंट है, हम सबकी लाइफ से मैच होती है।
1: बहुत सही। और एक बात पता है निशा, मैंने महाभारत, शायद जो हमारे टीवी सीरियल्स में चलते हैं, मैंने 5 से 6 बार देखा है सच्ची में, और हर बार मुझे एक अलग-अलग मैसेज मिलता है।
0: बिल्कुल, इससे मुझे एक चीज ये याद आती है कि एक ही बुक, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, ठीक है, लाइक आपने अपने 20s में पढ़ी होगी और फिर जब आप अपने 30s में पढ़ते हो या फिर 40s में पढ़ते हो तो हमेशा हम ना सेम बुक से सेम लाइंस रहती है दो, बट हम अलग अलग ज्ञान रिसीव करते हैं क्योंकि हमारे जो देखने का नज़रिया होता है वो हर फेज में, हमारी लाइफ की हर फेज में बदलते रहता है। किसी चीज़ को सोचने का तरीका, किसी चीज़ को परसीव करने का तरीका, तो वो सारी चीज़ें ना चेंज होते रहती है और इसीलिए सेम ज्ञान हम अलग अलग लाइफ के फेज पर अलग अलग टाइप से रिसीव करते
1: जी
0: हैं।
1: एकदम सही कहा आपने। और रही बात महाभारत, वो आपको बस लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, आपको बस जीना सिखा देता है।

0: जी हाँ, क्योंकि लाइफ जो है ना बड़ी ही अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, और लाइफ ना कभी भी कुरुक्षेत्र बन सकती है, तो उस कुरुक्षेत्र
1: जी
0: में कैसे बचकर निकलना है ये हमें आना चाहिए।
1: जी और एक बात मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ, जब मैं बात महाभारत की करता हूँ, इसको ना आप एक बार ऐसा मत लीजिए जैसे कि ये रिलीजियस कोई एपिक है, इसको बस एक
0: बिल्कुल।
1: एपिक के रूप में लीजिए और एक बार देखिए। इसमें कैरेक्टर्स आप भूल जाइए कि ये किस रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एपिक ही ऐसा है कि मतलब आपका लाइफ एकदम देखने का नजरिया बदल जाता है।
0: एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ यू जयदीप,
1: जी
0: कि
1: हाँ
0: कोई रिलीजन के नज़रिए से अगर हम ना देखें तो जो मैसेजेस हमें मिलते हैं इस युद्ध के दौरान, अगर किसी ने गीता पढ़ी है तो आई थिंक उसकी लाइफ अभी तक चेंज हो चुकी होगी,
1: जी।
0: राइट? और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक मैसेज हमें मिला है, ये है मुनीर अली जी की तरफ से। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस लवली मैसेज, जहाँ लिखते हैं ये, गुड मॉर्निंग, लेट योर कॉन्फिडेंस बी लाउडर देन योर डाउट्स, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आरजे निशा मैडम जी, आरजे जेडी जी। एक गाने की फरमाइश है तो हम कोशिश करेंगे कि वो गाना हम आपके लिए प्ले कर पाएं, मैं ना भूलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज।
1: और दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी हैदराबाद में चल रहा है सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो हैदराबाद में चल रहा है, और हमारे आरजे राणा प्रताप वहाँ पर लाइव है और वहाँ पर हमें कवरेज भेजने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में भी अपडेट्स आती रहेंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और यहाँ पर वक्त हो चुका है 11:38। और निशा जी, आपने कहा था कि आप एक कहानी सुनाने वाली है जो कि रियल स्टोरी है,
1: जी
0: और वो है अरुणिमा सिन्हा की।
1: बिल्कुल जी हाँ, आज वैसे भी हमने बहुत सारी बातें करनी है कर ली है। वर्ल्ड कोकोनट डे है तो कोकोनट ट्री से हमने सस्टेनेबिलिटी सीख ली, वर्ल्ड वॉर 2 से पीस की इम्पोर्टेंस समझ ली है ना, और जयदीप की स्पेशल पैनाकोटा जो डेजर्ट थी उससे पेशेंस सीख लिया, और कृष्ण जी की लाइफ से हमने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेथ के साथ फेस कर सकते हैं ये भी सीखा। और जी हाँ, जैसे कि समय हो चला है 11:40 एंड आपको मैं बता दूं फिलहाल के लिए कि 12 बजे ना आप जयदीप की कहानी सुन पाएंगे जो वो हमेशा आपको सुनाते हैं,
0: जी हाँ,
1: लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जैसा कि जयदीप ने कहा कि कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। वेल दोस्तों, ये जो कहानी है ना ये बहुत ही

0: इंस्पिरेशनल है और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये स्टोरी मैं आज सुनाती हूँ। तो जी हाँ, साल था 2011। अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, एक नॉर्मल जर्नी। लेकिन उस जर्नी में कुछ क्रिमिनल्स ने उनकी चेन खींचने की कोशिश की। अरुणिमा ने धक्का दिया उन्हें और इसी स्ट्रगल के दौरान उन्हें मूविंग ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जी हाँ, और पता है जेडी, ट्रेजेडी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अरुणिमा जी रेलवे ट्रैक्स पे गिर गई और एक दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गई।
1: अरे बाप रे।
0: उन्हें बहुत सीरियस इंजरीज हुई। डॉक्टर्स को उनका लेफ्ट जो लेग है वो काट कर फेंकना पड़ा।
1: अरे बाप रे, मतलब एक यंग वुमेन, एक एक्सीडेंट और अचानक पूरी लाइफ चेंज।
0: एग्जैक्टली, सोचिए, कल तक जो इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अगले दिन वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। एक लेग नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, और नेचुरली सवाल ये होना चाहिए था कि अब मैं क्या करूंगी।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: लेकिन अरुणिमा ने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने उस वक्त, उस सिचुएशन में, सोचो कितनी हिम्मत की बात है, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी।
1: क्या
0: बिल्कुल, व्हाट एन इंस्पिरेशन। अगर ये कोई स्टोरी सुन ले तो सच में वो मतलब इंस्पायर होकर ही रहेगा।
1: तो उन्होंने चढ़ा?
0: वो जो आगे की कहानी है, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी, और मुझे लगता है कि यहाँ से अरुणिमा जी की स्टोरी इंस्पिरेशनल बनने लगती है। उन्होंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन अपनी लिमिटेशंस को फाइनल आंसर नहीं माना।
1: मतलब एक्सीडेंट ने उनकी लाइफ बदल दी।
0: बट इट डिडंट गेट टू डिसाइड व्हाट हर लाइफ वुड बिकम, एंड दैट्स वेरी पावरफुल, यू नो। एंड एक चीज मैं यहाँ पर कहनी चाहूंगी कि कोई भी ड्रीम, यू नो, कुछ भी ड्रीम कर लेना इजी होता है, बट उस ड्रीम को पूरा करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
1: जी निशा, अब तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। हॉस्पिटल बेड पर एवरेस्ट का ड्रीम देखने के बाद क्या वो सच में माउंट एवरेस्ट तक मतलब पहुंच पाई?
0: जी हाँ, और इसी का आंसर मिलेगा हमारे नेक्स्ट जॉक टॉक में।
1: ठीक है ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा और हमारे लिसनर्स भी इंतज़ार कर लेंगे।
0: तो चलिए, फिलहाल के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की तरफ, जो आई थिंक हम सब के चेहरे पर थोड़ा बहुत स्माइल जरूर छोड़ जाएगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9।

0: हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते थो, अरे गाना खत्म हो गया, अरे बताया क्यों नहीं निशा तुमने?
1: अरे आप गुनगुना रहे थे तो मैं डिस्टर्ब कैसे कर सकती हूँ, है ना? कोई कोई गाना सुनकर एंजॉय कर रहा है और उसमें मैं इस चीज को लेकर खुश भी ना हो कि प्लेलिस्ट अच्छी है, ये कैसे हो सकता है बताओ?
0: जी जी ये भी बात सही है। तो चलिए दोस्तों, तो आप बताइए, अभी आप कुछ बोलने वाले थे, मेरी तो क्यूरियोसिटी की लेवल मतलब सर के ऊपर जा चुकी है।
1: ओके, आई थिंक हमारे लिसनर्स भी क्यूरियस होंगे, या फिर बहुत सारे लिसनर्स को हो सकता है आंसर तो पता होगा, लेकिन जो वो जर्नी थी उनकी, उसको उन्हें फिर से एक बार जीने का मौका मिले. और आपका क्वेश्चन था कि क्या अरुणिमा सिन्हा सच में एवरेस्ट तक पहुंच पाई, एंड
0: जी
1: आई थिंक हमारे बहुत सारे लिसनर्स का भी यही क्वेश्चन है. और इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ आपसे कि जी हाँ, बिल्कुल, अरुणिमा सिन्हा ने अपने ड्रीम को सिर्फ ड्रीम नहीं रहने दिया. उन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग शुरू की और उन्हें गाइडेंस मिली लेजेंडरी माउंटेनियर बिजेंद्री पाल जी से, इंडिया की फर्स्ट वुमेन एवरेस्ट समिटर. एंड जी हाँ, ट्रेनिंग शुरू होती है हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग, फिजिकल प्रिपरेशन और आर्टिफिशियल लेग के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस. उन्होंने एवरेस्ट से पहले डिफिकल्ट क्लाइम्स भी किए ताकि बॉडी और माइंड दोनों प्रिपेयर हो सके. फिर आया दोस्तों 2013, अरुणिमा सिन्हा जी अपनी एवरेस्ट एक्सपीडिशन पर निकल गई. अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन और दूसरी तरफ एक आर्टिफिशियल लेग के साथ एक वुमेन जो उस माउंटेन के समिट तक पहुंचना चाहती थी. और माउंटेन पर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं होता दोस्तों, कोल्ड, एग्जॉशन, ऑल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन लेवल और हर स्टेप के साथ एक मेंटल बैटल.
0: जी बहुत ही मतलब मेरे तो गूज बम्स आ रहे हैं यार ये सुनते हुए,
1: और हाँ
0: क्योंकि यू नो आई एम सो सॉरी बट ये मतलब सुनते ही कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो भी एक पैर के साथ, दैट इज़ लाइक इनक्रेडिबल। क्योंकि मैं जब नासिक गया था और ब्रह्मगिरी का पर्वत चढ़ा था मैं, वो है बस सिर्फ 3-4 किलोमीटर का माउंटेन,
1: जी
0: और उसी में मेरी तो ना टाई टाई फेस हो गई थी।
1: जी ऐसा होता है अक्सर, बट जनरली तब होता है ना जब हम मन से हार जाते हैं. हमारी बॉडी गिव अप नहीं करती, बट हम मन से हार जाते हैं कि अब नहीं होगा. तो अगर
0: बिल्कुल
1: आपने बोल दिया कि अब नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं है अंदर से,
0: जी,
1: तो वो आप नहीं कर पाओगे,
0: तो
1: या
0: सब
1: फिर
0: मन
1: कर
0: का
1: भी
0: खेल।
1: पाओगे तो मतलब एकदम
0: जी
1: हार कर.
0: नहीं हाँ ये बात सबको अग्री करना ही होगा।
1: तो चलिए स्टोरी के साथ आगे बढ़ते
0: जी जी
1: हैं.
0: जी
1: और इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग के साथ, इतनी डिफिकल्ट प्रिपरेशन के साथ भी उन्होंने गिव अप नहीं किया. और 21 मई 2013, यही ये साल था, समय था, सुबह के 10:55 अरुणिमा सिन्हा जी माउंट एवरेस्ट के समिट पर पहुंच गए.
0: वाओ यार लाइक वाओ
1: टू गुड, राइट?
0: सच्ची
1: ये
0: में।
1: बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है. हमने बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी है, बट आई थिंक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, वो भी ये जानते हुए कि उनकी एक टांग आर्टिफिशियल है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है. एंड आई थिंक हम भी जब भी कोई ऐसा डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं अपने लिए, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें रोकने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा पॉसिबल
0: जी
1: नहीं है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बट वो अपने डिसीजन पे अड़ी रही, ये बहुत बड़ी बात है.
0: और मुझे तो लगता है कि खासकर हमारे जो यंग जनरेशन है

0: इनको ये स्टोरी सुनना ही होगा, क्योंकि आजकल के बहाने, अरे यार रहने दो मुझे, और थोड़ा सोने दो, अरे मुझे सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, मुझसे नहीं
1: बिल्कुल
0: होगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये सारी जो है ना सिर्फ मन की ही बातें होती है।
1: जी। और उन्हें बताना भी ये ज़रूरी है कि जो कंसिस्टेंसी है ना, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर आप कोई चीज़ शुरू कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हर दिन उतना ही वक्त दे उस चीज़ को जितना कि आपने डिसाइड किया है। किसी दिन कम वक्त भी दे सकते हैं, किसी दिन ज़्यादा वक्त भी दे सकते हैं। दैट इज़
0: यानी कि डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं आप,
1: या
0: डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी होता है।
1: ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल के लिए एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है व्हाट्सएप पर, एंड ये दीप हैं। इनका कहना है कि हमने जैसे कि कान्हा जी की बात की, तो ये कहते हैं कि कान्हा जी का नाम आए और राधा जी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राधा कृष्णा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने या साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने का नाम है। और शायद इसीलिए उनकी प्रेम कहानी आज भी बहुत फेमस और प्रसिद्ध प्रेम कहानी मानी जाती है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी आपका। और हमें यहाँ मैसेज करते हैं सुब्बू फ्रॉम टोली चौकी, और ये कहते हैं आपका आरजे बडीज शो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज तो ऑफिस में बैठकर मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ ये सुन रहा हूँ, और ऑफिस बडीज को भी आपका शो सुनना बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बट पता है इन्हें डर क्या है?
0: जी
1: डर ये है कि पीछे से मैनेजर ना आ जाए।
0: जी हाँ, तो ये भी है कि हमारा भी शो मिस नहीं हो सकता है और ऑफिस का काम भी मिस नहीं हो सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका सुबू जी, आप हमें सुन रहे
1: और
0: हैं।
1: ध्यान से मैसेज को देखिए, नीचे एक सॉन्ग की फरमाइश भी है फ्रॉम द फिल्म
0: जी
1: फुकरे, इश्क दे फनियर।
0: जी हम जरूर कोशिश करेंगे सुबू जी, आपका सॉन्ग हम बजाने के लिए अगर हमें मिल जाएगा तो हम जरूर बजाएंगे। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और नंबर है
1: 4023234822। वेल इट्स 52 मिनट्स पास 11 बाय द स्टूडियो क्लॉक। डियर लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। और आपको बता दे कि शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और समय यही कह रहा है कि अब इस शो का ये जो सेकंड सेगमेंट है ये ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ इन हिंदी, एंड एट 12:05 यू विल बी लिसनिंग टू न्यूज़ इन इंग्लिश आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 12 बजे, 12:10 के बाद क्या होने वाला है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जयदीप अपनी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ यहाँ पर स्टूडियो में हाजिर रहेंगे, जैसा कि वो हमेशा अपने शोज में एक कहानी कार की तरह एक खूबसूरत कहानी सुनाते, तो आज भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी लेकर ये हाजिर रहेंगे। और बीच बीच में अगर पॉसिबल है तो सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन हैदराबाद में जो हो रहा है उसकी लाइव कवरेज आरजे राणा प्रताप के साथ आप सुन पाएंगे।
0: जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी म्यूजिकल जर्नी की तरफ।

0: గెలుస్తా అనుకుంటున్నారా?
1: 100% బెటర్ అని ట్రై చేస్తున్నాను.
0: థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है. श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया. अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग

0: श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said, that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with five

0: జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చింది. పరిచయం చేస్తున్న మై ఎల్ఐసి, ఎల్ఐసి సరికొత్త కస్టమర్ యాప్.
1: మీ పాలసీలు, పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్.
0: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్, 360 degree పాలసీ డీటెయిల్స్, క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్, పాలసీ అప్డేట్స్, రివైవల్, పేపర్లెస్ ఈకేవైసీ.
2: ఎల్ఐసి, ప్రతిక్షణం మీకు తోడుగా.
3: Well, it's 11 minutes past 12 by the studio clock. A very good afternoon, dear listeners. You are tuned in to Akashwani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Aap sun rahe Namaste, Hello, Adab, jo ki ek musical journey hai. And musical journey ke saath saath na yahan pe baatein bhi bahut sari hoti hai. Aur agar aapko bhi bahut sari baatein karni hai, to koi baat nahi. Ek aur segment hai hamare paas, jise kehte hain Hello Rainbow, jo dopahar ke 1 baje se start hoga. Wahan par aapki baatein bhi सुनी जाएंगी. एंड फिलहाल के लिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप सुनेंगे एक स्टोरी. जी हाँ, क्योंकि आज यहां पर हमारे साथ है आरजे बड़ी, जयदीप है हमारे साथ. लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हैदराबाद में सेकंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, जिसकी लाइव कवरेज दे रहे हैं आरजे राणा प्रताप. तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं वहीं पर और सुनते हैं इस लाइव कवरेज को. फादर ऑफ पैरा बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम महाराष्ट्र.
4: టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది. సో సెప్టెంబర్ 1, 2, 3 ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ డేట్స్ లో హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఈ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ వాళ్ళ ఫాదర్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడి మీకు అనిపిస్తుంది ఏంది అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చారు, మహారాష్ట్రని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో హై సార్.
5: హలో,
4: ఆప్కా నామ్ ఔర్ ఆప్కి దేశ్?
5: మేరా నామ్ హై సంజయ్ రెడికర్, फ्रॉम महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट. ये मेरा बच्ची पैरा बैडमिंटन खेलने के लिए आया है, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ. और ये बैडमिंटन खेलने से शारीरिक तंदुरुस्ती बहुत अच्छी होती है, आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है और ऑल ओवर फिटनेस. तो ये मेरे बच्ची को मैंने हैबिट लगाया है बैडमिंटन खेलने का. सभी पालक लोगों ने, दिव्यांगजन के पिताओं ने अपने बच्चों को कोई ना कोई खेल खिलाना चाहिए, उनके पीछे रहना चाहिए, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. अभी मैं, मेरा बच्ची महाराष्ट्र से मैं आया हूँ, उसको मैं बचपन से ही उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची दिव्यांग है. तो यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से मेडल लेके जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ.
4: अच्छा.
5: इसलिए मैं सभी तमिल ये एसोसिएशन फोटोग्राफी या प्यारा, मैं मुझे उनका थैंक्स देता हूँ.
4: पोस्टल वालों को थैंक्स बोल,
5: थैंक यू, ऑल ऑफ थैंक यू.
4: और मतलब अब डिसेबल्ड है, अपने बच्चे डिसेबल है, सो मतलब ये गेम खेलते नहीं खेलते बोल के ऐसा जो रहता, एक अफवाह रहता कि इन लोग ना क्या कर सकते बोल के. लेकिन बैडमिंटन प्लेयर है आपके डॉटर, तो क्या बोलना चाहिए मतलब?
5: तो मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगा कि ये बच्ची मेरा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके लिए मैंने थोड़ा स्टडी किया और इसमें से ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या डिसेबिलिटी है शुरू शुरू में. तो मैंने इसमें स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट किया, बीएड कोर्स किया.
4: आप स्पेशल आपके बेटी के लिए?
5: बेटी के लिए मैंने बीएड कोर्स किया. मेरा प्रोफेशनल एक्विशन है फोटोग्राफी. तो फोटोग्राफी के साथ उसके मैं काम करते समय उसको सपोर्ट करता हूँ. उसको साइकिल सिखाया है, वो अभी पोस्ट ऑफिस में MTS यानी मल्टीटास्किंग में काम कर रही है. वो घर पे साइकिल सी जाती है, साइकिल सी आती है, और खुद मैं पोस्ट ऑफिस का काम पिता के नाते मैंने सिखाया उसको. मैं खुद सीखा और मेरे बच्चे को सिखाया. अभी वो अच्छा इंडिपेंडेंसली काम कर रही है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. और शुरू शुरू में ये बच्ची क्या खेलेगी ये मेरे को पता नहीं था. मैं इसको कुछ तो अंदर छुपा हुआ है, इसमें ताकत है इसमें, ये मैंने स्टडी करके उसको सपोर्ट किया. आज ये अच्छा पोस्ट ऑफिस का एथलेटिक्स भी है और प्यारा में बैडमिंटन टूर्नामेंट बहुत अच्छी खेल रही है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.

0: डॉटर से बात कर सकते हैं हम, बात करें।
1: हाँ बात करें।
0: हाय
1: निकिता। हाय
2: हाय, मेरा नाम निकिता, मेरा नेम इज निकिता।
0: ओके, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: मी अच्छा लगता है बैडमिंटन में, बहुत बैडमिंटन सीखा है मैं, जीतने के बैडमिंटन में है।
0: सो जीतेंगे आप?
2: जीतने के।
0: कप लेके जाएंगे?
2: 100%।
0: थैंक यू। సో విన్నారు కదా, అంటే ఒక ఫాదర్ తన పాపకి ఇట్లా డిజేబుల్, ఏం డిజేబుల్ ఉందో అని తెలియకుండా కూడా అట్లా ఆ పాపకి ఇట్లా మాట్లాడడం ఇబ్బంది ఉంది. సో ఆ విధంగా డిజేబుల్ ఉంటే, సో తన కోసం స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ కోసం అయితే స్టడీస్ ఉంటుందో, సో బిఎడ్ చేసి తన పాపని అంతా నేర్పించి సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడే పొజిషన్కి తీసుకొచ్చారనమాట. రైట్, సో ఇట్లా మరిన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను. స్టేట్ ఇంటూ ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం 201.9.
3: जी हाँ, सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो कि हैदराबाद में चल रहा है, और उसकी लाइव कवरेज हमें दे रहे हैं आरजे राणा प्रताप. और अभी आपने सुना अ वेरी प्राउड फादर, वो कितने प्राउड है आपने उनकी बातों को सुनकर महसूस कर लिया होगा. रंजीत गोहिल जी गुजरात की प्लेयर हैं उनकी बेटी, एंड जैसा कि आपने सुना वो हैंडीकैप्ड है, बट स्टिल बहुत खुश हैं इस टूर्नामेंट में आकर. और एक बार फिर से हम जुड़ने वाले हैं लाइव कवरेज के साथ.
0: सेकंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हैदराबाद में चल रहा है. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सितंबर में ये गेम्स हो रहे हैं, तो आज सेकेंड डे में अपन है. तो अपने साथ बात करने के लिए रंजीत गोयल फ्रॉम गुजरात प्लेयर है. सर नमस्ते.
4: Namaste, I am Gujarat, Ranjit Goyal, Gujarat Circle. So, this time is I am win. Most important is the Telangana good opportunity for my department, Dak Bhavan, New Delhi, my minister, my secretary, and all the para player is a role model to this time.
0: Yes.
4: I am not handicapped, I am differently able people.
0: Yes, yes.
4: And every Indian, international, national, para badminton is a very approved, and I'm happy to my department.
0: And how you are feeling, sir, like playing here?
4: Feeling is I'm international player, the world champion in swimming.
0: Okay.
4: And starting my department support by badminton. I'm happy. My dream is the sports and the department of post. And I'm totally happy to my sports and my department. My all officers is support this para game department of post.
0: Yeah. So what do you want to say to all the people of India who are listening this, because you are differently abled persons?
4: This time is the government of India, Olympic medal 29, Paris Olympic. This para game is the Indian people is a role model to achieve the medal in the physically challenge after the game. Fitness, happiness, confidence, and all people are the watching for para game.
0: Yes. Thank you, sir. Thank you so much, and all the best, and have a good day, sir.
4: Thank you.
0: Sir, अपन अभी तक रंजीत गोयल से बात करें तो उन्होंने बोल रहे कि लाइक डिजेबल नहीं हूँ मैं, डिफरेंटली एबल पर्सन है हम लोग बोल के बोल रहे हैं. तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9.
3: थैंक यू सो मच राणा, एंड यस वी वर लिसनिंग टू टू प्राउड फादर्स जिनकी बातों में झलक रहा था कि वो कितने प्राउड हैं. सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है हैदराबाद में, एंड यहाँ पे जो पहली कॉन्वर्सेशन आपने सुनी वो एक महाराष्ट्र प्लेयर के पिता थे, एंड जो दूसरी कॉन्वर्सेशन जो अभी आपने सुनी ये थे रंजीत गोहिल, एक गुजरात प्लेयर के फादर थे. एंड जैसे कि आपने देखा कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, एंड इसीलिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी प्राउड हैं, काफ़ी खुश हैं. तो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, यू नो, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए उन बच्चों को. एंड यस, 12:20 ऑलरेडी हो चुके हैं हमें नमस्ते हेलो आदाब के सेगमेंट में, एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरजे जेडी है मेरे साथ, और वो हर शो में एक कहानी के साथ आपको एंटरटेन करते हैं, और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बाय आरजे जेडी. सुनते रहिए ये है एफएम रेनबो 101.9. और जी हाँ, इस स्टोरी को सुनने से पहले एक छोटा सा संदेश, सुनते रहिए.

0: कम हो जाता था। लेकिन एक दिन मल्होत्रा परिवार के घर में कुछ अजीब हुआ। सुनीता जी के बेडरूम की अलमारी से 50,000 कैश गायब थे। घर में हंगामा मच गया। स्टाफ से पूछा गया, सिक्योरिटी से पूछा गया, सबने मना कर दिया। राघव भी वहीं खड़ा था। राजेश जी ने बस इतना कहा, किसी पर बिना प्रूफ के शक मत करना। और पैसे नहीं मिले, बात खत्म हो गई। लेकिन 10 दिन बाद सुनीता जी की एक सोने की ब्रेसलेट का डिब्बा अलमारी से गायब थी। इस बार घर का माहौल बदल गया। सुनीता जी ने सारे स्टाफ को ड्राइंग रूम में बुला लिया और एक एक से सवाल होने लगे। फिर उनकी नजर राघव पर जाकर रुक गई। तुम रोज घर में रहते हो ना? राघव ने धीरे से कहा। जी मैम साहब, घर का हर कोना जानते होगे। राघव ने कहा। जी लेकिन, सुनीता जी ने बात काट दी। लेकिन क्या? राघव चुप रहा। राजेश जी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की। राजेश जी ने कहा, सुनीता प्रूफ के बिना। लेकिन सुनीता जी का गुस्सा रुक नहीं रहा था। राजेश जी की बात वहीं पर काटा और बोला, प्रूफ तब मिलेगा जब सब कुछ चला जाएगा। फिर राघव की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे घर की हालत भी तो ठीक नहीं है ना? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। राघव ने पहली बार सीधा सुनीता जी की आंखों में देखा। मेम साहब, गरीबी जरूर है मेरे घर में, लेकिन चोरी करने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। सुनीता जी ने तान से कहा, जरूरत इंसान से क्या क्या नहीं करवाता राघव। राघव का चेहरा उतर गया। तभी आरव आगे आया। मम्मी, राघव अंकल ऐसा नहीं कर सकते। अनन्या भी राघव के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने राघव के हाथ पकड़ लिया। पापा, राघव अंकल को मत निकालो। राघव ने बच्चों की तरफ देखा और बस इतना कहा, बच्चों तुम लोग मेरे लिए मत लड़ो। फिर राजेश जी की तरफ मुड़कर बोला, साहब 12 साल से अगर मैं भरोसा नहीं जीत पाया तो शायद मेरी वफादारी का कोई मतलब नहीं था। राजेश जी कुछ नहीं बोल पाए। उस रात सुनीता जी ने राघव को घर से जाने को कह दिया। राघव अपना छोटा सा बैग लेकर गेट पर खड़ा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस बड़े बंगले को देखा। वही बंगला जहां उसने 12 साल गुजारे थे, जहां आरव ने पहली बार साइकिल चलाई थी, जहां अनन्या ने स्कूल का पहला प्राइज जीता था, जहां राघव ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल देखे थे। अनन्या भागती हुई गेट तक आई। उसके आंखों में आंसू थे। राघव अंकल, आप कल आओगे ना? राघव कुछ सेकेंड्स के लिए उसे देखता रहा, फिर घुटनों के बल बैठकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, जब अपने ही घर से कोई निकाल देना तो वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। अनन्या रो पड़ी। राघव ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम बस पढ़ाई करना। आरव भी गेट तक आ गया। उसने राघव को गले लगा लिया और राघव 12 साल में पहली बार अपने मालिक के बच्चों को गले लगाकर रो पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राघव के जाने के बाद मल्होत्रा के घर में चोरी रुकने के बजाय और बढ़ गई। और तब आरव को एक बात समझ आई, अगर चोर राघव अंकल नहीं थे तो उनके जाने के बाद भी चोरी कैसे हो रही है? आरव बहुत परेशान था। अगर राघव अंकल चोर नहीं थे तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आखिरकार चोर है कौन?
1: जी हाँ, आखिरकार चोर है कौन? वैसे आरजे जेडी तो यहीं पे है, हालांकि वो अभी बताएंगे नहीं कि चोर है कौन।
0: जी हाँ, क्योंकि मैं कहानी के साथ ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी आपको बता दूंगा तो फिर वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी।
1: ओके, वैसे इस कहानी की दूसरी कड़ी से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ छोटे से संदेश आपको सुनवाना चाहेंगे। आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9।
2: नेहा, इमा

वो ज्यादा बात नहीं करती थी और हर बार जब घर में कोई चीज मिसिंग होती है वो सबसे पहले यही कहती, हमें क्या पता साहेब, हम तो इज्जत की रोटी खाते हैं। आरव ने पहले कभी उस पर शक नहीं किया था, लेकिन अब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उस दिन शाम को अनन्या ड्राइंग रूम में होमवर्क कर रही थी, शांति सफाई कर रही थी। अनन्या ने देखा शांति ने सुनीता जी के बेडरूम से निकलते वक्त अपना दुपट्टा एक बार जोर से संभाला और उसके हाथ में एक छोटी सी वेलवेट पाउच थी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही। शांति किचन में गई और पाउच को अपने बैग में रख दिया। अनन्या तुरंत आरव के पास गई। भैया, मैंने कुछ देखा। आरव ने पूछा, क्या है अनु? अनन्या ने अपने भैया को सब बताया। आरव तुरंत किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक शांति वहां नहीं थी। उसका बैग भी नहीं था। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, हम बिना प्रूफ के किसी पर शक नहीं करेंगे। अनन्या ने कहा, जैसे राघव अंकल पर किया था। आरव रुक गया। उस एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया, जैसे राघव अंकल पर किया था। उसी रात आरव ने छुपके से राघव को फोन किया। हेलो आरव बेटा। आरव कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर पूछा, रघु अंकल आप कहाँ हो? रघु ने जवाब दिया, घर पर बेटा। आरव ने महसूस किया राघव की आवाज में पहली वाली ताजगी नहीं थी। अंकल, मम्मी ने जो कहा था उसका बुरा मत मानना। राघव हल्के से हंसा, बेटा बड़े लोगों की बातें दिल पे नहीं लेते। आरव ने तुरंत कहा, लेकिन हम लेते हैं। राघव चुप हो गया। फिर अनन्या ने फोन ले लिया, राघव अंकल आपने खाना खाया? राघव ने झूठ बोला, हाँ बेटा। लेकिन उसके पीछे से एक और आवाज आई, सुनिए जी दवाई ले आए हो? अनन्या चुप हो गई। उसने आरव की तरफ देखा। राघव की पत्नी कमला बीमार थी और राघव खुद कई दिनों से काम के बिना था। आरव को अचानक समझ आया राघव के पास पैसे की कितनी जरूरत होगी। लेकिन उसी वक्त राघव ने एक बात कही, बेटा अगर तुम्हारे घर में मुझ पर शक हुआ है तो एक बात याद रखना। आरव चुपचाप सुन रहा था। गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन हर गरीब चोर नहीं होता। आरव की आंखों में आंसू आ गए। फोन कट होने के बाद आरव कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने अनन्या से कहा, अनु हम राघव अंकल को वापस लाएंगे। अनन्या ने पूछा, कैसे भैया? आरव ने कहा, पहले असली चोर को पकड़ेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उन्होंने अपने घर की चोरी को एक बच्चों का खेल नहीं, एक मिशन समझा। अगली सुबह आरव ने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसने पापा से कहा, पापा कल मेरा बर्थडे है। राजेश जी मुस्कुराए, कल? हाँ मुझे तो याद है। आरव ने कहा, मैं घर में एक छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ। राजेश जी ने हाँ कर दी। लेकिन आरव ने पार्टी इसीलिए नहीं रखी थी कि बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। उसने जानबूझकर घर में एक महंगी वॉच रखी, ऐसी जगह जहां वो सबको आसानी से दिख सके। और फिर आरव ने घर के सभी लोगों को बता दिया, पापा ने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। शांति ने भी वो बात सुनी। अनन्या ने चुपके से आरव की तरफ देखा। आरव ने आंखों से सिग्नल दिया, अब देखते हैं। अगली सुबह वॉच अपनी जगह पर नहीं थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या ने धीरे से कहा, भैया वॉच गई। आरव ने कहा, अब असली गेम शुरू। और उस दिन जब आरव ने घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी तो स्क्रीन पर जो चीज नजर आई उसने उसके होश उड़ा दिए। आखिर उस सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला? आरव को ऐसा क्या दिखा जो उसके होश उड़ा दिए?

आगे बढ़ाते हुए आरव और अनन्या सीसीटीवी स्क्रीन के सामने बिल्कुल छुप खड़े थे। रात के करीब 10 बजे का फुटेज था। ड्राइंग रूम खाली था। फिर शांति धीरे धीरे कॉरिडोर से आई। उसने इधर उधर देखा और सीधा उस टेबल के पास गई जहां आरव ने जानबूझकर वो महंगी वॉच रखी थी। उसने वॉच उठाई, कुछ सेकंड्स अपने हाथ में पकड़कर देखी, फिर अपने कपड़ों के अंदर छुपा ली। आरव ने ये वीडियो पॉज कर दिया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। भैया, राघव अंकल चोर नहीं थे, आरव ने धीरे से कहा। हमने उनके साथ बहुत गलत होने दिया। लेकिन आरव सिर्फ शांति को पकड़ाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि पापा और मम्मी अपनी आंखों से सच देखे। अगले दिन आरव ने पापा से कुछ नहीं बताया। उसने बस कहा, पापा मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या बेटा, क्या चाहिए? आज शाम आप ऑफिस मत जाना। राजेश जी हैरान हुए और पूछे, क्यों बेटा? आरव ने सिर्फ इतना कहा, बस मुझ पर भरोसा कीजिए, बस आज आप मत जाना ऑफिस को। राजेश जी ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में इतनी सीरियसनेस देखी। उन्होंने हाँ कर दी। शाम को आरव ने घर में सबको बता दिया कि पापा के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आए हैं। फिर उसने जानबूझकर एक एनवलप स्टडी रूम के टेबल पर रखा। एनवलप के अंदर असली डॉक्यूमेंट नहीं थे, बस कुछ खाली पेपर्स, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लग रहा था। आरव ने स्टडी रूम का दरवाजा आधा खुला छोड़ा और फिर वो और अनन्या अपने रूम में चले गए। लेकिन दोनों की नजर सीसीटीवी मॉनिटर पर थी और वो कैमरा छुपा हुआ था ताकि कोई उसे देख ना सके। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर शांति स्टडी रूम के पास आई। दरवाजे पर रुककर उसने अंदर देखा, फिर धीरे से अंदर गई। उसने एनवलप उठाया और इसी वक्त आरव ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेव कर ली। मिल गया। राजेश जी स्टडी रूम में आए। शांति के हाथ में एनवलप था। राजेश जी को देखते ही शांति घबरा गई। राजेश जी ने पूछा, ये क्या है? शांति कुछ नहीं बोली। सुनीता जी भी वहां आ गई। आरव और अनन्या भी रूम में आ गए। आरव ने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज चला दी। स्क्रीन पर शांति साफ दिख रही थी, वॉच चुराते हुए, बेडरूम में जाते हुए और उससे पहले की गई छोटी छोटी चोरियां भी एक एक करके सामने आ गई। रूम में सन्नाटा था। सुनीता जी का चेहरा सफेद पड़ गया। शांति के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। राजेश जी ने धीरे से पूछा, राघव को क्यों फंसाया? शांति की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, साहब क्योंकि सबको उस पर शक करना आसान था। राजेश जी ने गुस्से से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? शांति रोते हुए बोली, साहब पहली बार पैसे की जरूरत थी, फिर जब किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया तो मुझे लगा मैं बच जाऊंगी। राजेश जी चुप रहे। शांति ने सर झुका लिया। शांति ने कहा, लेकिन राघव को निकाल दिया जाएगा, ये कभी

0: सोचा नहीं था। आरव ने तुरंत कहा, तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, तुमने एक ईमानदार इंसान की इज्जत भी चुरा ली। उस दिन राघव को फोन किया गया, राजेश जी ने खुद किया। राघव ने फोन उठाया। जी साहब, सब ठीक तो है ना? कुछ सेकंड्स तक राजेश जी बोल नहीं पाए, फिर धीरे से कहा, राघव घर आ जाओ। राघव कुछ सेकंड चुप रहा। जी क्यों साहब, क्या हो गया? राजेश जी की आवाज भर आ गई, तुमसे माफी मांगनी है। फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी। कुछ देर बाद राघव उसी बड़े से बंगले के गेट पर खड़ा था, वही गेट जहां कुछ दिन पहले वो अपने छोटे से बैग लेकर निकला था। लेकिन इस बार गेट खुद राजेश जी ने खोला। राघव अंदर आया, सुनीता जी सामने खड़ी थी, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो राघव के पास आई और धीरे से बोली, राघव मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। राघव ने कुछ नहीं कहा। सुनीता जी की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी गरीबी देखी लेकिन तुम्हारी ईमानदारी नहीं देख पाई, मुझे माफ कर दो। राघव ने सिर झुका लिया। राजेश जी ने कहा, 12 साल तुम्हें इस घर को अपना घर समझा, हम तुम्हें एक शक की वजह से भूल गए। राघव ने बस इतना कहा, साहब गलती हो गई। राजेश जी ने तुरंत कहा, नहीं राघव, गलती तुम्हारी नहीं, हमारी थी। तभी अनन्या भागते हुए आई, उसने राघव को गले लगा लिया। राघव अंकल, राघव ने उसे कस के गले लगाया। आरव भी पास आ गया। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुमने तो मुझे वापस मेरी नौकरी नहीं मेरा परिवार वापस दिया है, तुम क्यों माफी मांगते हो? अनन्या ने आंसू पोंछते हुए पूछा, अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? राघव मुस्कुरा दिया, नहीं बेटा, अब तो तुम्हारी शादी में भी मैं ही गाड़ी चलाऊंगा। अनन्या हंस पड़ी और बहुत दिनों बाद उस घर में फिर से हंसी सुनाई दी। राघव एक ईमानदार और वफादार इंसान था और वो हमेशा उस परिवार को अपना समझा। उस परिवार ने छोटी सी भूल की लेकिन राघव ने उन्हें अपना समझकर माफ कर दिया था। और दोस्तों, राघव को उस दिन सिर्फ नौकरी वापस नहीं मिली थी, उसे कुछ और मिला था और वो था इज्जत। वो इज्जत जो कुछ पल के शक ने उसे छीन ली थी। और शायद इसीलिए जिंदगी में किसी इंसान की हैसियत देखकर उसकी नीयत का फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब होना और बेईमान होना दोनों अलग बातें हैं। और कभी कभी जो इंसान हमारे घर की गाड़ी चलाता है वो सिर्फ हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वो हमारी जिंदगी के बहुत सारे सफर का गवाह होता है, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाता है, उनके डर में उनका हाथ पकड़ता है, रात को देर से घर लौटने पर इंतजार करता है और बिना किसी शोर के सालों तक अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता है। राघव जैसे लोग शायद हर घर में नहीं मिलते, लेकिन जब मिल जाएं, तो उन्हें सिर्फ ड्राइवर कहकर मत देखिए, उनके अंदर भी एक कहानी होती है, एक परिवार होता है, मजबूरियां होती है और सबसे बढ़कर एक दिल होता है। राघव ने 12 साल उस घर की गाड़ी चलाई थी लेकिन उस दिन आरव और अनन्या ने उसकी जिंदगी को फिर से एक सही रास्ते पर चला दिया, क्योंकि असली वफादारी वो नहीं होती जो मुश्किल वक्त में सबको दिखाई दे, असली वफादारी तो वो होती है जो तब भी साथ रहे जब सामने वाला आप पर शक कर रहा हो। और राघव वैसे ही था, वफादार, और उसने दी सालों की वफादारी और कमाई इज्जत।
1: जी हाँ, ये थी आरजे जेडी की कहानी। एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जैसा कि यहाँ पर मैं मैसेज देखती हूँ, ये हैं विजय फ्रॉम लंगर हाउस, लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी है। और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही थी ना, बहुत इंटरेस्टिंग मालूम हो रही थी। और अब तो जानने की और भी क्यूरियोसिटी है कि इसके बाद आरजे

0: यार जीडी क्या कहना चाहेंगे। एंड एक और मैसेज आ चुका है हमें, ये अशोक जी कहते कि कहानी तो मस्त है लेकिन आज के दौर में से लोग बहुत कम मिलेंगे आज के दौर में, एंड सुपर। तो क्या कहना चाहेंगे आप आरजे जीडी?
1: यहाँ पर हमें लोगों की तो फीडबैक और कमेंट्स आ रही है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप बताइए कि आपको कैसे लगी कहानी।
0: मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इससे जो मुझे सीख मिलती है वो ये है कि हम कभी कभी अपने शक के बेसिस पर कितना कुछ ख़राब कर लेते हैं, अपने मन में ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं किसी के बारे में कि गलती शायद उस इंसान की है। और मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं किसी और इंसान को सोचती हूँ कि इंसान ने शायद ये किया होगा, लेकिन
1: जी
0: उस इंसान ने वो नहीं किया होता है। बल्कि हमारे मन में ऐसा आ जाता है क्योंकि हमारा उस इंसान से हो सकता है कि रिलेशनशिप अच्छा ना हो, तो कोई भी ख़राब काम होता है तो हम सोच लेते कि उसी इंसान ने किया होगा,
1: जी
0: बट उस इंसान ने नहीं किया होता है। तो
1: जी हाँ,
0: पहले ही डिसीजन बना लेना किसी के बारे में ये गलत बात
1: बिना
0: है,
1: प्रूफ के।
0: बिना प्रूफ
1: और
0: के।
1: आप एक बात देखिए,
0: जी
1: यहाँ पर बच्चे, यहाँ इनका किरदार मैंने इतना, मतलब आप खुद ही देखो कि बच्चों के दिल में सिर्फ लाइक साफ सफेद कागज होता है। बच्चों का दिल सफेद कागज जैसे होता है जिसपे कुछ भी स्क्रिप्टेड ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: क्योंकि अगर ईमानदार, सबसे ईमानदार और वफादार जो देख सके, देख पाए, तो वो सिर्फ बच्चे होते हैं।
0: बिल्कुल ओके। तो चलिए, आई होप कि हमारे लिसनर्स को ये स्टोरी पसंद आई।
1: और हमारे लिसनर्स, अगर आपको कमेंट करना है या फीडबैक देना है, आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और व्हाट्सएप नंबर है
0: 4023234822।
1: जी हाँ,
0: तो चलिए, फिलहाल के लिए बातों पर देते हैं विराम, यानी अपनी बातों पर। ऑब्वियसली हमारे आरजे राणा तो वहाँ पर लाइव कमेंट्री कर ही रहे हैं, तो उनकी बातों का सिलसिला अब यहाँ पर जारी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर हैदराबाद में। तो यहाँ पर आरजे राणा,
1: जो कि हो रहा है मोहिनाबाद में, और स्टेडियम जहाँ पर हो रहा है वो है फायरफॉक्स स्पोर्ट्स एंड रिसॉर्ट्स में।
0: जी, तो यहाँ पर आरजे राणा गए हुए हैं और वहाँ से लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए हम आपको लिए चलते हैं वहीं पर जहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू लिए हैं, जिनमें अल्पेश सुतेरिया सबसे पहले शामिल है। तो हम फिलहाल के लिए उनके इंटरव्यू की ही तरफ चलेंगे। सुनते रहिए, ये है एफएम रेनबो 101.9।
2: सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन हैदराबाद हो रहा है। तो सितंबर 1st, 2nd और 3rd डेट्स में ये अपने हैदराबाद में हो रहा है। तो अब अभी अपने साथ बात करने के लिए अल्पेश सुतारिया फ्रॉम गुजरात, पैरा टेबल टेनिस व्हील चेयर प्लेयर है, उनसे बात करेंगे। हेलो सर, नमस्ते।
3: नमस्ते, मेरा नाम अल्पेश सुतरिया है, मैं गुजरात से बिलिंग करता हूँ और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये थर्ड ऑल इंडिया सेकंड ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया है और मैं एशियन चैम्पियनशिप पैरा टेबल टेनिस चाइना में भी खेला हुआ हूँ और ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। और मैं डिपार्टमेंट और यहाँ तेलंगाना सर्कल का चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का थैंक्स बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और टूर्नामेंट का भी बहुत बढ़िया ये पूरा व्यवस्था किया हुआ है, और हमें ये स्पोर्ट्स खेलने में भी बहुत मजा आया, और अगली बार भी ऐसा बड़ा आयोजन हो ऐसी हम रिक्वेस्ट करेंगे।
2: आप गेम खेल चुके हो या खेलना था? अब नेक्स्ट है आपका गेम।
3: अभी मेरा 2 बजे मैच है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूंगा और यहाँ से गोल्ड मेडल लेके ही जाऊंगा।
2: और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है जैसा आप जैसे, सो उनको क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जो बहुत जने क्या कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, सबके जैसा नहीं हूँ बोल के जो कॉन्फिडेंस लूज करते ना, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
3: मैं पैरा प्लेयर को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी जो कमियाँ है उसको मत, मतलब दिमाग में लो उसको, आप मतलब दिमाग से हटा के आप ऐसा ही सोचो कि हम एक नॉर्मल पर्सन है। तो उस हिसाब से आप सोचने लगोगे तभी आप घर से बाहर निकल पाओगे। और ऐसे ही जितनी भी अभी हमारे इंडिया में पूरा पैरा का बहुत माहौल अच्छा बन रहा है, तो मैं सभी पैरा प्लेयर को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अंदर जो भी हुनर है उसको आप संवारिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और देश का नाम और अपना जिला और स्टेट का नाम भी रोशन कर सकते हैं।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।

0: सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हैदराबाद में हो रहा है सितंबर 1st, 2nd और 3rd. सो 3 डेज का ये जो टूर्नामेंट है, सो आज अपन सेकेंड डे में है और अभी अपने साथ बात कर रहे हैं अल्पेश शाह सर, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर पोस्टल सर्विसेज अहमदाबाद रीजन गुजरात एंड मैनेजर कम प्लेयर है टेबल टेनिस व्हील चेयर. सर गुड मॉर्निंग. हाई सर, कैसे हो आप?
1: बस आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार. और हैदराबाद इस पैरा पोस्टल स्पोर्ट जो हमारा जो सेकंड पोस्टल का हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट लेने के लिए हम अहमदाबाद गुजरात से पूरी टीम 4 मेंबर की टीम लेके इधर आए हैं. यहाँ का हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है और जो फायरफॉक्स जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो सिलेक्ट किया हुआ है इज़ वेरी गुड बेड और उसके अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से आज पूरे भारत के अंदर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से जो प्लेयर्स जो हमारे दिव्यांग पैरामेट आए हैं उसके साथ आज मिलने का

0: बेड और उसके अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से आज पूरे भारत के अंदर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से जो प्लेयर्स जो हमारे दिव्यांग पैरामेट आए हैं उसके साथ आज मिलने का उनके साथ खेलने का एक अच्छा मौका मिला। उसके लिए भी मैं पोस्टल डिपार्टमेंट और तेलंगाना पोस्टल सर्कल को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए अरेंजमेंट किया और यहां का जो एनवायरनमेंट है वो जो पैरा पोस्टल स्पोर्ट दिव्यांग के लिए बहुत ही इको फ्रेंडली और सुगम्य भारत के अंतर्गत बनाया हुआ है।
1: और ये जो सर लाइक आप फोर मेंबर प्लेयर्स के साथ आए बोले तो उनका गेम हुआ या फिर
0: नहीं? अभी हमारे एक प्लेयर का गेम हो गया है और अभी मेरा और हमारे और दो तीन जो मेंबर है उनकी गेम होने वाली है और मैं तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पूरा ऑल इंडिया का फर्स्ट पैरा ओलंपिक पैरा पोस्टल स्पोर्ट जो दुर्ग में हुआ था छत्तीसगढ़ उसके अंदर भी मैं टेबल टेनिस के अंदर मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था।
1: कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट।
0: थैंक यू सर।
1: और आज आप कप जीत के जाने वाले हो?
0: यस, हमें आशा है और आप सब लोगों की दुआ रहेगी तो हम गुजरात सर्कल के चारों में से चारों लोग इतना प्रयत्न करेंगे तो चारों मेडल लेके हमारे गुजरात पोस्टल सर्कल को हम एनायत करेंगे।
1: सब क्या संदेश देना चाह रहे सर जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है जो भी है सो लोग कभी कभी लो हो जाते हैं कि ऐसा है हम लोग बोल के सो सबके जैसा नहीं है बोल के सो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
0: मैं एक सभी दिव्यांग मित्रों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चाहे कोई भी फील्ड में हो आप कोई एक गेम सिलेक्ट कीजिए। एज का कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी एज में कहीं पे भी खेल सकते हो मगर क्या आज के जमाने में भारत के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने पैरा स्पोर्ट्स के लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है और दूसरा 2030 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है उसके अंदर भी अभी हमने गुजरात के अंदर जो मेंटली डिसेबल जो सीपी स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी हमने वो ट्राई किया हुआ है कि वो कॉमनवेल्थ के अंदर उनके लिए भी कुछ स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाए और मैं सभी दिव्यांग मित्रों और उनके फैमिली को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बच्चे हमारे पास कुदरत ने कुछ ऐसी कुछ चीज ले लिया है और उसके सामने हमें बहुत ऐसी शक्ति दिया हुआ है तो हमें उसका यूज करके और अपना मनोबल बना के हम होंगे कामयाब के नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप देख सकते हो कि पैरा ओलंपिक जो हुआ उसके अंदर जो नॉर्मल पेस्ट हमारे जो स्टाफ गए थे जो स्पोर्ट्समैन उससे भी ज्यादा अवार्ड्स लेके आए और भारत सरकार और हर राज्य सरकार पैरा स्पोर्ट्स के लिए इतना सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट दे रहे हैं तो हम सब खंबा मिला के पैरा स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हार जीत तो होती रहती है हम कॉइन उठाते हैं तो एक साइड अलग रहता है पर उससे नासीपास ना होके हमें हमारी क्षमता के अनुसार अपना योगदान देना है उसके लिए प्रैक्टिस करना है और हमारे जीवन को मजबूत बनाना है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
1: सो ये अपने हुई है बात अल्पेश शाह असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज अहमदाबाद रीजन और गुजरात से एंड मैनेजर कम प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस व्हीलचेयर प्लेयर है सर। तो सर बोले कि हम होंगे कामयाब एक दिन सो आप कभी भी लो फील नहीं करना है। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 फॉर मोर अपडेट्स।
2: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
3: గాంధీ శిల్ప్ బజార్ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ గ్రాండ్ ఎగ్జిబిషన్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ తెలంగాణ కళాభారతి ఎన్టీఆర్ స్టేడియం ఆపోజిట్ ఇందిరా పార్క్ కవాడిగూడ హైదరాబాద్ ఆగస్టు 29 నుండి సెప్టెంబర్ 7 వరకు. కమిషనర్ హస్తకళల అభివృద్ధి శాఖ భారత ప్రభుత్వ జౌళి మంత్రిత్వ శాఖ సౌజన్యంతో తెలంగాణ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా తయారైన హస్తకళా వస్తువులు చేనేత వస్త్రకళా ప్రదర్శన ఇంకా అమ్మకాలు. రండి, 150కి పైగా స్టాల్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన అద్భుతమైన హస్తకళల చేనేత ప్రదర్శనను వీక్షించండి, కొనుగోలు చేయండి, చేతి వృత్తులను ప్రోత్సహించండి.
1: second All India Postal Para Badminton and Para Table Tennis Tournament in Hyderabad.

0: गेम्स मतलब ऐसे होते हैं जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए होता है ये। और आप देखिए कितने वो लोग, आपने एक कहानी बताई आप आज हमको हिमालय क्या माउंट एवरेस्ट की।
1: और यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी हम उन्हें डिसेबल्ड ना बोले, स्पेशली एबल्ड,
0: जी
1: डिफरेंटली एबल्ड बोल सकते
0: जी
1: हैं.
0: और यहाँ पर मैटर करता है फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ का। जो
1: जी.
0: कि आपने कहानी बोली थी सिन्हा जी की, सेम टू सेम।
1: अरुणिमा सिन्हा जी.
0: जी
1: जी बिल्कुल. एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आई थिंक कि हमारे लिसनर्स बहुत देर से
0: इंतजार
1: इंतज़ार कर रहे हैं कि हेलो रेनबो के साथ हम कब उनके साथ जुड़ने
0: जी
1: वाले हैं, क्योंकि
0: हाँ
1: ऑफ कोर्स यहाँ पर आज दो दो आरजेज हैं. बट जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिली फ्रॉम द टूर्नामेंट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपको देनी. लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ेंगे, हेलो रेनबो का सफ़र जारी करने वाले हैं. और क्योंकि आज ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर टू का एंड हुआ था जब जापान ने सरेंडर किया था, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि वॉर से आपको क्या मैसेज मिलता है, या दूसरों को आप वॉर्स के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे?
0: जी हाँ, तो मुझे और हमें आप बताइए आपका ओपिनियन क्या है वॉर्स के ऊपर। जब वॉर होता है तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको क्या मैसेज मिलता है और आप हमें क्या बताना चाहेंगे?
1: ओके, तो हम जुड़ते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश. एंड आपको बता दें कि हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो हैं 0402323 00 30, 0402323 48 21 और 0402970 4715. तो जी हाँ, जुड़ेंगे आपसे थोड़ी.
2: కదా అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. అట్ 7 PM ఎవ్రీ డే ఓన్లీ ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
1: दोपहर के 1:19.
0: तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। तो आपका फेवरेट सेगमेंट चालू होता है। अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हेलो रेनबो के माध्यम से, और नंबर्स अभी आपको निशाने बता दिए थे। तो जी हाँ, चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से।
1: और अब हमारे पहले कॉलर से बात हम करने
2: गुड
1: वाले हैं.
2: आफ्टरनून मैडम,
1: गुड आफ्टरनून.
2: दोनों को
0: गुड
2: हाँ जी,
0: आफ्टरनून मैडम।
2: बहुत अच्छा दिखा आज.
1: थैंक यू सो मच. एंड हम
2: इतने
1: यही जानना भी चाह रहे थे अपने लिसनर्स से
2: हमारे
1: एक्चुअली.
2: पलक बंद कर लूं के
0: जी,
2: खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए.
1: हम्म,
2: पलक बंद कर लूं के छलक नहीं ना जाए. बहुत अच्छा, बहुत उमदा है. अकेला बताए वो बताए,
0: बहुत
2: बहुत
0: बहुत शुक्रिया
2: खुशी भी. कल
0: आपका.
2: नहीं हुई बात हमारी तो मायूस पे हम.
0: जी
2: बहुत
0: जी
2: अच्छा दिख रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं.
1: थैंक
0: बहुत
1: यू सो
0: शुक्रिया.
1: मच. एंड एक क्वेश्चन था हमारा.
2: बोलो.
1: हाँ जी, जो आज वर्ल्ड वॉर टू का को ऑफिशियली एंड किया गया था, तो जो जंग होती है तो उससे आपको क्या मैसेज मिला है, या फिर आप अगर कोई मैसेज शेयर करना चाहते
2: हमारे
1: हैं?
2: बाबा फौज में थे, जंग लड़े थे, बहुत खुशी होती ये बात सुन के.
0: जी,
2: जय हिंद जय हिंद.
1: जय
0: बहुत
1: हिंद.
0: बहुत शुक्रिया, जय
1: ओके, थैंक
0: हिंद।
1: यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू.
0: तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: हेलो.
3: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून आदाब, निशा जी, जेडी जी.
1: गुड
0: गुड
1: आफ्टरनून
0: आफ्टरनून
1: आदाब.
0: शेर खान जी, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सबकी दुआएं हैं और सब सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम आदाब. बस
0: बहुत बहुत
3: अल्लाह आप
0: शुक्रिया
3: सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, हमेशा दुआ है मेरी.
0: जी।
1: और बताइए शेर खान जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
3: पहले तो आपका और जेडी जी का शुक्रिया, आपने जो कहानी हकीकत वाली कहानी बताई,
1: जी
3: और जेडी जी ने भी कहानी में ही हकीकत थी वो भी एक,
1: हाँ
3: जो
1: हाँ
3: हमको सब्र सिखाता है, भरोसा
1: जी
3: सिखाता है,
1: जी
3: माफ करना, माफी मांगना सिखाता है, माफ करना सिखाता है.

0: तो ये थे रमेश जी, और एक मैसेज भी यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ इमरान जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून आरजे निशा एंड आरजे जेडी, सो थैंक यू सो मच। वेल, यहाँ पर हेलो रेनबो के साथ हैं हम, लेकिन एक चीज़ और भी हमें याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे साथ आरजे राणा भी जुड़े हुए हैं फ्रॉम सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो कि हैदराबाद में चल रहा है फायरफॉक्स स्पोर्ट्स एंड रिजॉर्ट से। तो हमारे साथ आरजे राणा अभी बने रहेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं वहीं पर और सुनते हैं वहाँ से लाइव कवरेज बाई आरजे राणा प्रताप।
1: सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हैदराबाद में हो रहा है September 1st, 2nd और 3rd डेट्स में। सो आज अपन सेकेंड डे September 2, 2nd डे में हैं। सो आप भी अपने साथ बात करने वाले संगीता जी सुकरिया जी फ्रॉम गुजरात, इंटरनेशनल टेबल टेनिस और व्हील चेयर प्लेयर। मैडम नमस्ते,
2: नमस्कार दोस्तों।
1: आपको कैसा लग रहा है मैडम आज आप इधर हैदराबाद
2: ये
1: में?
2: हैदराबाद में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक दिव्यांग इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हूँ, और मैं इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी के पत्नी वाइफ हूँ, और खुद भी एक दिव्यांगता के साथ जीवन जी रही हूँ। आज मैं अपने पति के साथ नेशनल पोस्टल पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हैदराबाद में एक एस्कॉर्ट के रूप में आ रही हूँ, और ये मेरे लिए एक सिर्फ यात्रा नहीं है, लेकिन ये एक हिम्मत, संघर्ष और साथ चलने की कहानी है। मैं हर दिन सीखती हूँ कि सीमाएं शरीर में नहीं होती, सीमाएं सोच में होती हैं। आज मैं गर्व से महसूस कर रही हूँ कि मैं इस सफर का हिस्सा हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो शरीर से खुद अच्छा होता है वो मन से हार जाता है, लेकिन मेरे शरीर में इतनी खामी है लेकिन मैं महसूस नहीं करती। हर दिन कुछ कुछ को मुस्कुराहट गले लगाना सीख ले, जिंदगी के हर इम्तहान में खुद को आजमाना सीख ले। ये मुश्किल तो बस कुछ पल हैं, मुसाफिर हूँ तो बस हर हाल में आगे कदम बढ़ाना सीख ले। थैंक यू सर।
1: और आपको हमारी हैदराबाद कैसा लगा मैडम?
2: बहुत बढ़िया, इसके यहाँ ये सुविधा ये सब है, बहुत अच्छा है,
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो
2: दिल
1: मच।
2: से मैं खुश हूँ।
1: दिल से खुश हैं आप, थैंक यू सो मच। सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट हैदराबाद में हो रहा है September 1st, 2nd और 3rd डेट्स में। सर सेकेंड डे में अपने साथ बात करने वाले हैं जलपा पोबारू फ्रॉम गुजरात, टेबल टेनिस व्हील चेयर प्लेयर। हेलो मैडम नमस्ते।
3: हेलो नमस्कार, आई एम फ्रॉम गुजरात, भक्तिनगर पोस्ट ऑफिस, राजकोट डिवीजन। माई सेल्फ शल्पा पोबारू। मैं एक दिव्यांग पैरा टेबल टेनिस व्हीलचेयर प्लेयर हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी पहचान दिव्यांग के रूप में नहीं बल्कि खिलाड़ी के रूप में दे रही हूँ। मेरी जिंदगी आसान नहीं रही है, बहुत लोगों ने मुझे कहा ये तुमसे नहीं होगा, बट आई थिंक कैसे नहीं होगा, इफ आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू। दुनिया यह कहती है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब मैंने टेबल टेनिस का रैकेट हाथ में लिया तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि क्या मैं ये कर सकूँगी, बाद में ये सिर्फ मेरे लिए खेल नहीं रहा, वो मेरी ज़िंदगी का एक नया रास्ता, एक नई सफ़र बन गई। और मैं गिरी हूँ, उठी हूँ, और उठी तो भी पूरे जोश के साथ उठी हूँ कि आई मस्ट डू एंड आई कैन डू। कई बार हारी हूँ लेकिन हारना मैंने अपनी डिक्शनरी में कभी शामिल ही नहीं किया है। और जो भी बाधाएं मेरे जीवन में आई है उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया है, और मैं अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझती हूँ, और ये जो डिसेबिलिटी है उसको मैं मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत समझती हूँ। और आज मैं ऑल इंडिया पैरा टेबल टेनिस व्हीलचेयर जो टूर्नामेंट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हो रही है वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे फैसिलिटीज सब अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, उससे हमें हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है कि हम लाइफ में नॉर्मल लोगों की तरह कुछ कर सकते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। सो जो इसमें सोचते हैं कि

0: दिव्यांग क्या करेंगे उसके लिए मैसेज है कि जो हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। थैंक यू।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच राणा, इतनी इम्पॉर्टेंट यू नो इन्फॉर्मेशंस आज ऑन एयर जा रही है, वो आपकी वजह से ही जा रही है। सो यस, सेकेंड ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो कि हैदराबाद में हो रहा है, ये 1, 2 और 3 तारीख को हो रहा है, एंड वहीं से बहुत सारे प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल प्लेयर्स के साथ साथ हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, क्योंकि हम हैं हेलो रेनबो के साथ, और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो नंबर्स है 0402323484821, 0402323230030 और 0402970 4715। और आज का जो मैसेज है वो है कि वॉर्स जो है, जंग जो होती है, उससे आपको क्या मैसेज मिलता है। फिलहाल एक मैसेज यहाँ पर हमारे साथ अश्विन जी का लिखते हैं, जय श्री कृष्ण निशा जी को और जीडी जो जी को भी। तो जी हो, जी हाँ, आपको भी जय श्री कृष्ण और बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज को भेजने के लिए। फिलहाल हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ,
3: देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो रेनबो,
4: गुड आफ्टरनून सर, दोनों को गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून।
4: तो
3: जी सर, आप कहाँ से बात कर रहे
4: हैं? बहुत अच्छी लग, मैं मोहम्मद अफजल गोकुंडा फोर्ट से बात कर रहा हूँ।
3: जी अफजल जी,
4: आज जेडी जी साहब की कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे आँख से आंसू जारी हो गए आज लास्ट में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल जी,
4: ईमानदारी के मामले में जो थी वो बहुत अच्छी लगी
3: जी।
4: एक सबक आमोश कहानी है वो।
3: जी जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने आज हमारी टॉपिक सुनी है सर?
4: जी जी मैं सुना
3: जी।
4: तो
3: हाँ,
4: जंग से हासिल तो कुछ नहीं होता। हमने देखी कई जंगे देखी हम 1947 की, मुख्तलिफ देखे अपन, तो उसमें सिवाय वो जापान में जो नागासाकी पे जो बमबारी हुई थी तो उसके नतीजे हम देखे, वो अब तक भी देखने में
3: जी, आते। जी। बहुत सही बात
4: है, जिद है। हाँ, जिद से मसला हल होने वाला नहीं है, बातचीत से मसला हल होने वाला है
3: जी,
4: मतलब नहीं करना चाहिए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: जो है सिर्फ बर्बादी से और कुछ दूसरा कुछ भी देखे नहीं जाते।
3: जी जी अफजल जी,
4: थैंक यू,
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बिल्कुल सही कहना है अफजल जी का कि जो जंग होती है उससे हमें कुछ भी नहीं मिलना है ना, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ बर्बादी होती है। ये तो देखा जाता है अंत में कि कौन जीता, लेकिन आई थिंक वो जीत नहीं होती है, वो हार ही होती है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज, और अगर एक इंसान, एक सोल्जर को अगर कुछ हो रहा है तो उसकी पूरी फैमिली का भी, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। तो हम भी यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे कोई भी जंग, चाहे कोई भी लड़ाई, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर हो, चाहे वो एक बड़ी लड़ाई हो या घर के झगड़े हो, हमें अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है, क्योंकि चाहे एक छोटी लड़ाई क्यों ना हो लेकिन जो नुकसान है वो दोनों तरफ से होता है। चाहे एक रोड पे जो लड़ाई हो जाती है, किसी की गाड़ी किसी से टकरा जाती है, और हैदराबाद में तो फिर भी ठीक है, लोग चलो चलता है बोल के, जान दो बोल के जाने देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लोग बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं और वहीं पे लड़ने लगते हैं, तो उससे नुकसान दोनों का होता है, और बाकी के जो लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं उनका भी बहुत सारा नुकसान होता है, और ये एक छोटा सा एग्जांपल है
3: जी। और अफजल जी हमें कह रहे हैं कि बातचीत से सुलझाना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन उस बातचीत के लिए आपको एक काम स्टेट ऑफ माइंड में आना पड़ेगा
3: जी, जी।
2: तो वहां पर ही ये चीज आती है कि आपको अपनी ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा।
3: सही है, तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन।
2: ओके जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, एंड थैंक यू सो मच जेडी, आपकी तरफ से आप एक बार फिर से थैंक यू बोलिए, आपकी स्टोरी को इतना पसंद किया जा रहा है।
3: जी वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लिसनर्स का, और आप सभी लोग मेरी स्टोरी को हमेशा सुनते हैं और हमेशा प्यार देते हैं, और ये मुझे एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि मैं अगली बार और अच्छे से मैं इसको प्रदर्शित
2: एक और स्टोरी यू नो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी या फिर से हम अपने लिसनर्स को सुनवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारे लिसनर्स लाइव जाने वाले हैं।
3: चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
2: हेलो हेलो
5: मैडम,
2: गुड आफ्टरनून,
5: कैसे हैं मैडम?
2: मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रेड्डी जी। सही पहचाना ना?
5: नरसिम्हा रेड्डी मैडम।

0: सुनने को मिला है।
1: ऑफ कोर्स, हमारे लिसनर्स भी खुश और हम भी खुश।
0: जी हाँ
1: देखिए, एक यहाँ पर मैसेज आया हुआ है और ये भी काफी खुश लग रही है।
0: जी हाँ, ये मैसेज करते हैं सुषमा पटाले और ये कहते हैं, टचिंग वॉइस एंड हार्ट फेल्ट स्टोरी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, और आप हमें सुन रही है। और ये है प्रिया फ्रॉम सन सिटी, कहानी बहुत अच्छी थी आरजे जेडी, कीप इट अप।
1: वाकई में, सच में कहानी बड़ी अच्छी थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, और तभी तो हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने कहानी को खूब पसंद किया। और
0: जी
1: यहाँ पे
0: हाँ
1: अश्विन जी हैं फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट, जय श्री कृष्णा लिखते हैं और कहते हैं कि कृपया करके आप लोग आते रहिए और जंग से सभी को नुकसान है, ये लिखते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और साथ में एक प्यारा सा मैसेज है, कहते हैं कि माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले ना ढेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। वाह, क्या बात है,
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब।
1: ही खूबसूरत,
0: जी
1: और बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी का ये मैसेज भेजने के लिए।
0: जी
1: खैर, हमारे साथ कुछ लिसनर्स भी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और आई थिंक हमारे कुछ ऐसे भी लिसनर्स हैं जो ये म्यूजिकल जर्नी है तो कुछ सॉन्ग्स भी इंजॉय करना चाहते हैं। क्या कहते हो
0: जी
1: जेडी?
0: हाँ, चलिए एक
1: एक
0: एक
1: सॉन्ग
0: म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं
1: उन पर
0: हम
1: जा
0: लोग।
1: ही देते हैं, राइट,
0: जी
1: हमारे उन लिसनर्स के लिए जो आई थिंक हमसे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ सुनने को अगर उनको कुछ मीठा सा, कुछ अच्छा
0: जी
1: सा मिल
0: हाँ,
1: जाए तो क्या बात है, राइट। तो
0: इंतजार
1: चलिए,
0: में हमेशा म्यूजिक काम आता है
1: बिल्कुल, बैकग्राउंड में कुछ अच्छा बजता रहे तो
0: तो
1: वाकई
0: मजा आ
1: में मन को
0: जाता है।
1: खुशी मिलती है, और
0: जी
1: इसीलिए ये गाना जो हम अभी आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं वो आप सुनिए।

0: जब अपने पुराणों में जो लिखा हुआ था, जो वो लोग वो जीवन का जो वो विधान था,
1: हाँ,
0: वो आज क्यों अमल नहीं कर रहे लोग? एक बात कहता हूँ मैं कि जमीन से जो भी निकल रहा, मिनरल्स हो, मेटल्स हो, जो भी निकल रहा, उसको खाली काम काज के लिए आप खर्च करने के बाद वो चीज को दाम सही दो, कहीं बढ़ा के बेच रहे तुम? जो जो भी है जीवन का अपना जीवन का उद्देश्य एक ही है निशा जी, अपन आते हो कुछ लाए कुछ भी नहीं, आते
1: हो कुछ
0: लेके आने वाला कुछ भी नहीं है, तो फिर चीजों को काली पीली बढ़ा लेके कहीं को एक दूसरे के उसमें भड़क ले रहे थे। ये सब वहीं से शुरू हो रहा निशा जी,
1: बस यही कह सकती हूँ कि हाँ जी आप बताइए।
0: बताइए
1: मैं यही कह सकती हूँ, कुछ लोग यहाँ पे पाप कर रहे हैं, कुछ लोग पुण्य कर रहे हैं, तो अगर हम ज्यादा पुण्य करें तभी वो पाप का जो पलड़ा है वो नीचे जाएगा।
0: बस बस अपन एक दो तरफ भगवान भी दिखा रहा निशा जी, नेपाल में हो रहा उस चीज को देख के भी अपन कुछ ना कुछ संभल रहे क्या ग्लोबल वाइज? संभल ले रहे हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक हादसा हुआ, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है,
1: कुछ भी नहीं है।
0: जो भी है, जो भी है भगवान हो, कुछ भी हो, पावर में है, हो रहा उसको अपन नहीं रोक सक रहे।
1: जी जी बिल्कुल,
0: नेपाल में जो हो रहा था उसको नहीं रोक सक रहे। जो है सो चीज को अपन खराब क्यों कर रहे हैं? खून दिया आपको, अपने हक खून दिया, ये जंग लड़ने के लिए खून दिया, थोड़ा तो भी समझो यार। इस वर्ल्ड को जो यूनिवर्सली आप चलाने वाले हैं, बड़े आदमी हैं, आपके आपके बात में जब दम नहीं रहे तो छोटे वाले भी आपके हिसाब से चल रहे ना, फिर उन लोगों को खड़ा कर रहे हैं आप। वो मैं कहना चाह रहा था अगर उसे करते एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, जो नाम तो नहीं मालूम मेरे को, नीले नीले गगन,
1: अच्छा नीले नीले अंबर,
0: नीले नीले गगन, एक कौन सा कवि का कल्पना, एक कौन चित्रकार है, एक कौन चित्रकार?
1: ओके, कोशिश करते क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है।
0: अच्छा नो परवा नहीं निशा जी, अगर हो सके तो दे दिया। ग्रेट डे बोथ ऑफ यू,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
2: तो जी हाँ, इतने सारे कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं, निशा जी क्या कहते हैं, एक और कॉल ले लेते हैं?
1: एक और कॉल लेने का तो मेरा भी मन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश और उसके बाद हम लेते हैं एक और कॉल।
3: ईरानी चाय,
4: बन मस्का,
3: हैदराबादी बिरयानी,
4: टंग दी कबाब,
3: कुर्बानी का मीठा,
4: शहदूद मलाई,
3: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
4: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
3: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
4: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
3: It's not just food.
4: It's culture, history and flavor rolled into one.
3: Jashne Hyderabad.
5: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయ प्रधान एनिकला अधिकारी तेलंगाना।
2: तो वेलकम बैक दोस्तों, हम देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो रेनबो, हेलो
6: हेलो
2: हेलो सर।
6: जी सर, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, मैंने आप लोगों को तब से सवाल कर रहा हूँ, आप मेरा सवाल नहीं उठा रहे सर।
2: जी जी सर, हमें इतने सारे कॉल्स आते रहते हैं।
6: देखिए सर, मैं नाबीना हूँ, मैं आप लोगों को तब से कॉल कर रहा हूँ, आप लोग सबसे बात कर रहे, हमारे से क्यों नहीं बात कर रहे सर?
1: माफी चाहेंगे सर, लेकिन यहाँ पर हम यही तो हमारी भी परेशानी कि हम देख ही नहीं पा रहे कि कौन कॉल कर रहा है।
6: देखिए आप लोग पहले मेरा नाम नहीं पूछे, मैं इमरान सर बात कर रहा हूँ, हैदराबाद।
1: अच्छा इमरान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: जी नाबीना, इमरान सर बात कर रहा हूँ।
1: ओके,
2: और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा
6: बात कर रहे हैं?
2: नहीं नहीं, अभी तो हम ये सोचेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि आपका कॉल हमसे जुड़ गया है।
6: देखिए मैं भी आप लोगों का चैनल तमाम सुनता हूँ, आप लोग क्या क्या बोलते वो सुनता हूँ।
2: जी जी,
1: तो चलिए, आपको अभी कैसा लग रहा है कि

0: आप हमारे लास्ट कॉलर है, सो लकी कि आप से
1: हम आपके लास्ट कॉलर है। आप
0: जी।
1: देखिए
0: तो
1: आपको
0: सोचिए कि
1: फोन
0: आपसे
1: लगाया
0: भली
1: मैंने। आप
0: हाँ जी
1: देखिए देखिए, मैंने आपको 11 o'clock से फोन आ कर रहा हूँ, तो आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे।
0: चलिए, बहुत दुख की बात है क्योंकि हम भी नहीं देख पा रहे कि किनका किनका कॉल आ रहा है, और इसी वजह से हम नहीं जानते कि कौन कब से कॉल ट्राई कर
1: देखिए
0: रहा है।
1: देखिए देखिए, मेरे को SM रेडियो के पूरे लिसनर पहचानते हैं, मैं सबको पहचानता
2: जी
1: हूँ।
2: सर,
0: चलिए, फिलहाल तो हमारी बात हो गई है
1: आप
0: और आई थिंक आप बहुत खुश होंगे, एटलीस्ट
2: और
0: बात हो गई
2: मैं
0: हमारी।
2: तो ये बात जरूर बताऊंगा कि हम भी बहुत खुश हो गए कि आपका कॉल हमसे जुड़ चुका है आखिरकार।
1: देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, हम आप लोगों तो ने आने के लिए भी तैयार है। आप लोग तब बुलाते, बोलिए आप लोग के चैनल से भी आएंगे।
2: बहुत खुशी हुई सर ये सुन के।
1: आप
2: ठीक
1: हमारे तरह आइए, हम आपसे नहीं आते। जी
0: ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ हो कि आप यहाँ पर आ सके, हमसे मिलने आ सके, या फिर आपकी आवाज़ सीधे स्टूडियो से हमारे लिसनर्स तक पहुँचे। लेकिन फिलहाल के लिए तो हेलो रेनबो के साथ आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, क्योंकि यहाँ पर हाँ जी।
1: गाना लगाइए भाई।
0: अच्छा, तो जी हाँ, तो अभी फिलहाल वही करते हैं, हम आप लोगों को छोड़े जाते हैं प्यारे से सॉन्ग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: वो तो सॉन्ग तो सर, हेलो हेलो,
0: हाँ, दिल तड़प तड़प के कह रहा, फ्रॉम द फिल्म मधुमति।
1: अरे वो सॉन्ग हो ना आपने तो।
0: जी ओके, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू
1: थैंक
0: सो मच।
2: यू। कुछ कॉलर्स कितने प्यारे होते हैं यार,
0: जी हाँ, जो
2: जो
0: हमारा दामन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं।
2: जी। और हाँ,
0: जी
2: हमसे अभी तक जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की और जिनके कॉल्स नहीं जुड़े हैं, हम माफी चाहते हैं क्योंकि हम कॉलर्स का नाम और नंबर नहीं देख सकते हैं, और वो मैजिक नंबर्स होते हैं और हम बस उठा लेते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, एंड यस, इसी के साथ आज के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि RJ राजेश ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुके हैं और
2: जी
0: अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि ये हॉट सीट उन्हें कब मिले।
2: जी हाँ, और आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, क्या बोलते हो निशा?
0: बिल्कुल, तो चलिए आज के लिए आपसे विदा लेंगे, और RJ JD आपसे जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं।
2: जी हाँ, आज जो हमारे टॉपिक्स थे, जैसे कि वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और उससे भी इम्पोर्टेंट था वर्ल्ड वॉर 2 रुकने का दिन, तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हम वॉर से हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। हालांकि कुछ कुछ है चीज़ें कभी कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन फिर भी बातों से पहले शुरुआत करनी चाहिए सुलझाने की। और एक बात है जो अभी जो हाल ही में नेपाल में जो हुआ है, उसके थ्रू तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है,
0: बिल्कुल
2: क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़े बड़े ब्रिजेस जो टनों के हैं, बस कुछ चंद सेकंड में सब साफ हो गया। तो इसका यही मैसेज है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
0: ओके, तो चलिए इसी मैसेज के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, और यही कहना चाहेंगे, लिव इन द मोमेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9
2: रेनबो के साथ लाइफ है
0: रंगीन।
2: रंगीन।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो पर। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30:15 हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। समय इनकी खिदमत में सना अलमास बावजीर का पुरखलूस आदाब। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

आगाज़ पर सुनिएगा हर्फे ताबिंदा, इसके बाद आप सुन सकते हैं मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत एक तकरीर। इस तकरीर का उन्वान होगा जुबान का आगाज़ वो इर्तिका, तहरीर वो पेशकश होगी डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान की।

0: तो आइए दोस्तों, बज्म का आगाज करते हैं हर्फे ताविंदा से।
1: मैसर आती है फुर्सत फख्त गुलामों को, मैसर आती है फुर्सत फख्त गुलामों को, नहीं है बंदा हर के लिए जहां में फराख। अलामा इकबाल का ये खूबसूरत सा शेर है जो ये कहता है कि फुर्सत यानी बेकारी, सुस्ती, आराम और ऐश पसंदी सिर्फ गुलामों को नसीब होती है। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझते, जो दूसरों के ताबे होते हैं, जो अपनी जाती या कौमी जिम्मेदारियों से आजाद होते हैं, उनके पास वक्त ही वक्त होता है। मगर वक्त एक अजीम नेमत है और ऐसे लोग वक्त को किसी अजीम मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसके बरक्स बंदा हर यानी वो इंसान जो हकीकी मानों में आजाद है, खुद शऊर रखता है, खुद ही का हामिल है और जो अपनी जिंदगी को एक बुलंद मकसद के ताबे कर चुका है, उसके लिए दुनिया में फरागत या सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी जिंदगी मुसलसिल अमल, जद्दोजहद, खिदमत, तामीर और बेदारी से इबारत है। उसकी जिंदगी मुसलसिल अमल, जद्दोजहद, खिदमत, तामीर और बेदारी के सरगर्मियों में सर्फ होती है। गुलामी सिर्फ सियासी या जिस्मानी हालत नहीं है, बल्कि जहनी व रूहानी गुलामी भी है और आज़ादी को एक मुसलसिल हरकत व जद्दोजहद का नाम दिया गया है, ना कि आराम का। जो शख्स हकीकतन आज़ाद है, वो हर लम्हा एक अजीम मकसद के लिए कोशा होता है। वो अपनी कौम, अपनी मिल्लत और इंसानियत की खिदमत में जुटा रहता है। उससे फुर्सत या आराम का ख्याल तक नहीं आता। अलामा इकबाल का ये खूबसूरत सा शेर अमल, बेदारी और खुदी के फलसफे की नहायत ही खूबसूरत अक्कासी करता है। आज़ादी का मतलब जिम्मेदारी होती है, मसरूफियत और मुसलसिल जद्दोजहद होती है, जबकि गुलामी का मतलब सुस्ती, बेमकसदी और गफलत होती है।
0: आयशा बुतुल अफशां की आवाज में अभी आपने सुना हर्फे ताबिंदा। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, हम आपसे ढेरों सारी बातें करेंगे और आगे हम बातचीत करेंगे कौमी गजाइत का हफ्ते के मुताल्लिक, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं। डॉक्टर एस डी विष्णु सतिया को उन्वान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।

0: से दो लबी आवाज निकालते हैं, जैसे पापा, मामा, बाबा वगैरह वगैरह। मस्कुरा तमाम नजरियात में सिवाय इल्हामी नजरिए के दीगर तमाम नजरियात एक मकसूद व महदूद मकादिब फिक्र रुझान की पैरवी करते हैं, जो खयास और नीम खयास के बीच की कड़ी है। मजमी तौर पर जबान के आगाज के ज़िमन में इन नजरियात के जवाज़ और दलाइल लिसानी तौर पर कमज़ोर और गैर साइंटिफिक है। ये तमाम नजरियात हर्फ आखिर नहीं है जिस पर यकीन कामिल के साथ तस्लीम और एतबार किया जाए। आगाज जबान के ज़िमन में तहकीक का दरवाज़ा हमेशा हर दौर में खुला रहेगा। आज भी तहकीक तलब मौजू है। आने वाले हर दौर में आगाज़ ज़बान के सिलसिले में नए नए इंकशाफ होते रहेंगे। माहिर लिसानियात अपने नज़रियात और तसव्वुरात पेश करते रहेंगे। अलगर्ज आगाज़ और तश्कील ज़बान के अमल में कई एक महरिकात और राज सरबस्ता हैं, जो फितरी अवामिल व अनासिर और साइंटिफिक उसूल व ज़वाबित पर मुहित है। इस तरह आगाज ज़बान का तख्लीकी और इख्तिराई सफ़र माखुलियत व मारूजियत के साथ उमूर दुनिया और ज़िंदगी के तमाम अवामिल अपने जलू में लिए हुए हैं। इनकलाब ज़माना और हालात के तकाजे और मामलात दुनिया उमूर हयात का इरतकाई सफ़र ज़बान की इब्तिदा और नशो नुमा को दवाम बख्शा है।
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत एक तकरीर जिसका उन्वान था ज़ुबान का आगाज़ व इर्तका। तहरीर और पेशकश थी मोहम्मद अजमतुल्ला खान की। जी हाँ दोस्तों, आगे हम मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे और आगे आप सुनेंगे गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और इस सुरीले गीतों के सफ़र में बातें होंगी कौमी गज़ाइत के हफ्ते की। लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत से ये गीत।

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं. डॉक्टर एस जी विष्णु सतिया को उन्वान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक. तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर.

FM Rainbow 101.9 आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और इस गीतों के सफर में बातें होंगी अनेक। सुरीले गीतों का सफर शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।

हाँ जी बिल्कुल, अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं मनचले नटखट गीत और ढेरों सारी बातें लेकर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज सुरीले गीतों के सफ़र में बातें होगी कौमी गजाइत की। हाँ जी बिल्कुल, हर साल 21 सितंबर ता 7 सितंबर तक कौमी गजाइत का हफ्ता मनाया जाता है, जिसका मकसद मुतवाजन गजा और सेहतमंद ज़िंदगी की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुनासिब और मतवाजन ग़िज़ा बुनियादी ज़रूरत है। कौमी ग़िज़ाइयत का हफ़्ता लोगों को ये समझाने के लिए मनाया जाता है कि जिस्म की बेहतर नशोनुमा की मजबूती और इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त बीमारियों से बचाव के लिए मायारी खुराक कितनी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मज़ीद हम इसके मुतालिक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

0: FM Rainbow 101.9.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं। डॉक्टर एस डी विष्णु सत्या को उन्वान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेमबो FM 101.9 पर।

जी हाँ दोस्तों, सुरीले गीतों के सफ़र में हम बात कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक की, कौमी गज़ाइत का हफ्ते के मतलब जो है ना हम बातचीत कर रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आप तक हम ये जो है ना इतला लाजिमन दे रहे हैं कि गज़ाइत की अहमियत, अच्छी खुराक जिस्म को तवन्नाई न्यूट्रिशन फराहम करती है। मतवाजन गज़ा में प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मादनियात मुनासिब मतनासिब होता है।

0: FM Rainbow 101.9
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं। डॉक्टर एस जी विष्णु सतिया को उनवान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेमबो FM 101.9 पर।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और तो प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक की। जी हाँ दोस्तों,

प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं। डॉक्टर एस डी विष्णु सतिया को उनवान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।

तो दोस्तों, सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयाम-ए-शब, तहरीर वो पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर ज़ीदी की।

0: दिल के वीरानों में घूमोगे तो भटक जाओगे, रौनके कूचे वो बाजार से आगे ना बढ़ो। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे दर्द, राज और आजमाइशें पोशीदा होती हैं, जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए दूसरों के बातिन का फैसला करने, उनकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करने या छुपी हुई बातों की खोज लगाने से गुरेज करना चाहिए। इज्जत उसी में है कि इंसान दूसरों की पर्दापोशी करे, उनकी हुदूद का एहतराम करे और अपने दिल को भी अल्लाह की याद, नेक अमाल और अच्छे अखलाक से आबाद रखे। हर दिल एक अलग दुनिया है, उसके राजों का एहतराम करे, दूसरों की निजी जिंदगी में बिला जरूरत झांकने से परहेज करें। जाहिरी रौनक हमेशा अंदरूनी सुकून की अलामत नहीं होती। अपने दिल को हसद, नफरत और कीने से पाक रखें, यही हकीकी आबादी है। दूसरों के दिलों के राज टटोलने के बजाय अपने दिल को संवारने की फिक्र कीजिए, क्योंकि आबाद दिल ही इंसान की असल दौलत है।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन्हीं मीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीरी को दीजिए इजाज़त।

0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉर्ट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता है।
1: विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित

0: 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. Death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing, as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: Benchmark domestic stock market indices declines for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 400 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ. वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इसमें 8% से अधिक विकास करने की क्षमता है और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.

0: कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत लुढ़के। इससे लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंक लुढ़ककर 23,914 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच बाजार गैप डाउन के साथ खुले। दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और पूरे दिन दबाव में नजर आए। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद उन्होंने नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई भी की।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड अराउंड 0.5% लोअर टुडे, एक्सटेंडिंग द लूजिंग स्ट्रीक टू अ थर्ड कंसेक्यूटिव सेशंस। सेंसेक्स डिक्लाइंड बाय 374 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,570, व्हाइल निफ्टी फेल 141 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,914. In the broader market, Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.5%, while Nifty Small-Cap 100 Index declined 0.4%. Elevated crude oil prices, rising global bond yields, and future inflation concerns dented the Lal Street sentiment. Earlier, the markets opened with a gap down amid negative global cues. Both stock market indices traded within a narrow range and remained under pressure throughout the day. However, they paired some of the losses after the closing auction session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। इनमें लगभग 1.5% की गिरावट आई। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.3% का नुकसान दर्ज हुआ। इसके उलट अडानी पोर्ट्स में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई। बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और एनटीपीसी में 1% की तेजी आई और टाइटन 0.7% बढ़ा।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined by 1.7%, IT declined 1.2%, and insurance as well as capital goods dipped 1.1%. In contrast, utilities rose 1.4%, housing finance as well as energy gained 0.7%, and power added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,560 companies declined, 1,799 companies advanced, and 217 companies remain unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा में बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे कमजोर होकर ₹94.98 पर बंद हुआ। प्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि भू राजनीतिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है इस बीच, और उसका जो एक पूर्ण संकेत है वो हम बाजारों पर हम देख पा रहे हैं। मगर अगर हम आज के संदर्भ में बात करें कि आज जो बाजार में गिरावट आई है, इस पक्ष के अलावा और क्या ऐसे पक्ष रहे और क्या ऐसे कारण रहे जिसने एक तरीके से पोषित किया इस गिरावट को?
2: देखिए, 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से, एक्चुअली कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार गिर रहा है, एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो जो मेन कारण है वो यही है कि दोबारा से एक युद्ध जैसी स्थिति आ गई मिडल ईस्ट में, मतलब कि अटैक्स और काउंटर अटैक्स दोबारा से शुरू हुई। यू कैन सी इट हैपनिंग। उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे पड़ रहा है। कच्चे तेल का प्राइसेस पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा देता है जब कच्चे तेल का प्राइसेस बढ़ता है। और फिर आपका
0: जिसका सीधा इम्पैक्ट भी हम देख पाते हैं।
2: हाँ, हम जैसे जो इम्पोर्टिंग मुल्क होते हैं उन पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एनर्जी का, पूरा क्रूड का 85% हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। और फिर आपका एविएशन, अब जैसे मैं रिपोर्ट्स अभी पढ़ रहा था कि जो अभी वार दोबारा एस्केलेट हो गई है ईरान और यूएस के बीच में, और उसका नतीजा ये कि फ्लाइट्स दोबारा डिसरप्ट होने लगी। जो फ्लाइट्स
0: यानी तेल से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं,
2: हाँ, तेल से एक तो तेल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है, जो आपका रूट्स हैं। तो ये सारा बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है। इस अच्छी खबर के चलते बाजार गिरा, सुबह तो काफी गिरा हुआ था, फिर थोड़ी रिकवरी आई फॉर सेवरल टेक्निकल रीजंस। बाजार ने शायद बिकॉज अभी तक बाजार जो था ना थोड़ा यूज तो हो रहा था मिडल ईस्ट में, ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई अब दोबारा से एस्केलेट

0: लेकिन जो पिछले 2 दिन में और आज सुबह खास तौर पे जो हुआ वो फिर काफी चिंता का एक कारण बना बाजार के लिए, एंड वो आपके सामने जो हुआ।
1: प्रकाश जी, ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज फिनोमेन इन द मार्केट टुडे। DIIs एंड FIIs विद द नेट बायर्स इन द मार्केट। वी ऑल्सो सॉ पॉजिटिव सेल्स डेटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट बाय द ऑटो सेक्टर, येट बोथ द ऑटो इंडेक्स फेल बाय 1.7%, एंड ऑफकोर्स निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑल्सो डिक्लाइन। हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज यू नो FIIs एंड DIIs आर द मेजर बायर्स इन द मार्केट, दे मूव द मार्केट, येट we saw a decline today.
0: Well, Arjun, it's all a game of sentiment. You know, sometimes technicals tell you something. The overall sentiment is so dampening. There's no confidence, right? So when there's no confidence, the momentum gets lost. And you know, the market comprises of mainly of trading. The traders, they are the nerve center of the market. They are the matchmakers.
1: We talk about retail segments and day traders?
0: No. Not the day traders do not comprise only retail. The big guys, the big institutional investors. So the and across the continent after continent, you don't find any sentiment. Even futures now, US futures don't give us a kind of comforting situation. So where do you go and hide, so to speak? So the technical data sometimes may point otherwise, but the real fact is the sentiment is disrupted and it doesn't really augur well for the market.
1: We saw the IT index also fall, correct in fact, today. What is the future for the IT sector? Because it's all linked to not only the European but the US market as well.
0: Well, IT, when it comes to Indian IT, it is somehow conversely related to the entire AI play.
1: Also, the US dollar to the rupee, the exchange rate is very important in terms of their revenue.
0: Well, it provides them some kind of a advantage because of the currency arbitrage. But that said, it cannot be the only your profit center. You can't play on only on currency arbitrage. You need to have a bottom line. And the bottom line, so far as the IT is concerned, there was some kind of reassurance again emerging, as if the AI play, in which we have not, or at least Indian IT firms have not been able to participate aggressively, or really not to the extent we would like it them to do it. But somehow AI play is not seem to be doesn't seem to be damaging so much as it was feared earlier. So let's see how it plays out in future.
2: प्रकाश, क्योंकि हम लोग क्षेत्र विशेष बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोई चुनिंदा क्षेत्र आप बताना चाहें जो इस वक्त जो आम निवेशक हैं उनके लिहाज से निवेश करने के लिहाज से जो थोड़ा सा सेफ हो, इतनी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और अनसर्टिनिटीज हैं इस बीच भी।
0: आम निवेशक को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उसको ऐसी कोई मजबूरी नहीं आज ही जाके
2: सतर्क किस लिहाज से?
0: हाँ, सतर्क मतलब अब देखो क्या होता है, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए पड़ा है, 4 लाख रुपए पड़ा है, मुझे कोई जल्दी नहीं कि जाके कल ही 4 लाख की खरीद कर लूं। मैं स्टैगर तरीके से खरीदूं, कभी 10,000 रुपए खरीदूं, फिर उस शेयर्स की प्रोफाइल देखूं। अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ, अगर म्यूचुअल फंड के रास्ते से मैं नहीं जा रहा, तो अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ और आम निवेशक हूँ और मेरे पास अगर 4 लाख रुपए पड़ा भी है, तो मुझे एकदम से नहीं जाना चाहिए। किसी ने बोल दिया, देख लिया, कुछ कर लिया, एंड आपको ये भी कई बार लालच आ जाता है कि यार मार्केट बहुत गिर गई है, हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको बड़े एनालिस्ट भी ऐसे मिल जाते हैं कि आइए, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन 2 साल से निफ्टी तो नहीं खिसका। तो यही सब आपको, जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो अब मैच्योर होने लगा है, वो भी हेडलाइन पढ़ता है, वो भी देख रहा है जियो पोलिटिकल सिचुएशन कैसी है। तो वो आम निवेशक अब देखिए ना, वो जा रहा किस रास्ते से, सिप के रास्ते से जा रहा है, म्यूचुअल फंड के रास्ते से जा रहा है। दूसरी वजह जो हमारी मार्केट में ये भी है, जो अब लोगों को नजर आने लगी है कि मार्केट

0: response, and this is how it worked. Let's hope that things will now, we'll see somehow stabilize in the forex market.
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरन रेटिंग को बीबीबी प्लस से बढ़ाकर ए माइनस कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और सरकारी निवेश के साथ साथ वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सुधार का हवाला दिया है। आज एक आधिकारिक बयान में जेसीआरए ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सरकारी निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा की तेज विकास दर बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद करने वाली नीतियां लागू की है। प्रकाश जी, इसकी क्या महत्ता है भारत के लिए?
0: जैसे इट्स अ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट हुई है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। जैसे वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा ने जी ने कहा, तो एक तरह के एंडोर्समेंट है कि हमारे मैक्रोज जो है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो इन प्लेस हैं, कोई वो है, तो इसलिए तो इम्प्रूवमेंट हुई हमारी सॉवरेन रेटिंग में। इससे अच्छा संकेत जाता है, खास तौर पे उस टाइम जब दिक्कतें आ रही हैं इधर से उधर से।
2: In more news, India's current account deficit widened to $4.2 billion, or 0.5% of GDP, in the first quarter of the current financial year. It was 0.4% of GDP in the same quarter a year ago. According to RBI preliminary data, the merchandise trade deficit rose by around $17 billion to over $86 billion during the same period. On the other hand, net services receipts increased by $3.5 billion to over $51 billion. Personal transfer receipts, mainly remittances from Indians working overseas, rose around $10 billion. On the investment front, FDI inflows improved to $6.1 billion. However, foreign portfolio investors have pulled out over $9.5 billion, compared with an inflow of over $1.5 billion in the same quarter last year. During the quarter, India's foreign exchange reserves depleted by $8.1 billion on the balance of payments basis. Your brief comments on this. We know that FDI investments have actually gone up. FPI have been withdrawing, which is why it has been affecting the Sensex Nifty to some extent, offset by the DIIs. But do tell us about our current account deficit because of what's happening to the Strait of Hormuz.
0: Well, Arjun, as per the data that you read out, 0.5% of GDP current account deficit, even after widening, it's not an alarming thing. It's manageable. Given the size of our economy, given the growth potential, growth that we are witnessing, and the potential of growth that is around. So this much, any developing country, for any developing country with appetite for growth, this kind of a current account deficit is not a kind of a cause of concern.
1: आइए अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4% गिरा, जबकि जापान का निकेई 2.8% नीचे आया। आर्थिक मोर्चे पर डेटा और सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में सालाना आधार पर 3% से अधिक बढ़ा, जो जुलाई में 2.8% था। वहीं कोर महंगाई, जिसमें खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, अगस्त में सालाना आधार पर लगभग 3.5% बढ़ी, जो जुलाई में 2.5% से अधिक थी। प्रकाश जी, कॉस्पी 4% गिरा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, और निके में 2.8% की हमने देखी कि गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात कॉस्पी की करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है, उसमें भी जो है बहुत ही इम्प्रेसिव तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ये वही जियोपॉलिटिकली जो चीजें हैं वो केवल वही इम्पैक्ट कर रही है?
0: कंटेजियस है ना ये, हर तरफ गिरावट ही गिरावट है, कहीं तो आपको हरा नहीं नजर आ रहा। आप पूरा भूगोल देख लीजिए, हर तरफ लाल ही लाल नजर आएगा।
1: अपनी तरफ भी, इनकी अपनी तरफ भी महंगाई।
0: तो हम लोग तो मिडल में रहते हैं, आप सुबह एशिया देखिए, फिर आप हमारे, हम भी एशिया में आते हैं, एशियन मार्केट, उसके बाद यूरोप चले जाइए, फिर आप अमेरिका चले जाइए, हर जगह लाल ही लाल नजर आएगा। तो आज तो लाल ही छाया हुआ है, उसके रीजंस हैं। मैं अर्जुन जी से पहले बात कर रहा था कि जो स्क्रिप्ट है, जब से ये वार चली है, स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रही है, एक तरह के फंसा हुआ है पूरा मार्केट, और कुछ

0: like kuch markets Korea was doing well a few months ago, a few weeks ago, thanks to AI play. तो लेकिन अभी तो सिचुएशन कुछ खराब ही है ना,
1: तो 8% तक की बढ़त देखी है.
0: हाँ तो उनके लिए तो गिरावट है कोई, लेकिन आज जो गिरावट है कोई अचंभा थोड़ी है, कोई बड़े की एक्सपर्ट्स की जरूरत भी नहीं है कि बोलने के लिए, तो इट्स सो ऑब्वियस.
1: नहीं शायद सीबीआई का जो डेटा आया है वो भी,
0: उन्हें सीबीआई डेटा क्या बता रहा है कोरिया में क्या, वो मैंने जैसे मैं अर्जुन जी से बता रहा था कि सेंटिमेंट जो होती है ना वो मैटर करती है. जो भाव है ना खबरों का, भाव इतना ओवरवेलमिंग है,
1: प्रवाह है,
0: प्रवाह है, भाव है, उसने आपको सब स्वे अवे कर दिया सब कुछ.
1: आगे बढ़ते हैं. भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक जुटकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी. कल G20 सम्मेलन में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई.
2: Moving on to the group, global crude oil market. Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 1% down at $93.73 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 1% lower at $89.24 per barrel when reports last came in. How concerned are we about what's happening when it comes to crude oil prices spiking?
0: That's the most important concern. It's the gravest concern for us and for the rest of the world. And I think some reports suggested that we have increased our strategic oil reserves, and countries are going for that. And let's see how it plays out. I think it's a challenge again. We thought ki things are easing. But now it has again resurfaced. It's a matter of concern, sure enough.
1: सराफा बाजार में सोना 1.3% की गिरावट के साथ 151,184 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 0.9% लुढ़ाकर 2,28,396 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices declined for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

11:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 7.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत, और आज आपके संग है अर्पना। शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की खयाम के संगीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और तलत अजीज की, फिल्म का नाम है बाजार, और इस फिल्म के गीत के बाद अगला गीत होगा आर डी बर्मन का संगीत है, आशा जी की आवाज है, और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, और इस फिल्म का नाम है इजाजत। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, गीत मेरे मनमीत में संग है आपके अर्पना। एक बार फिर से घड़ी मिला ले, 11:41 और 42 सेकेंड।

11:51 और 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर। येसुदास की आवाज होगी, हेमलता का साथ होगा, रविंद्र जैन का ही संगीत है और आप ही के लिखे बोल है। फिल्म चित्त चोर से ये गीत है।

11:56 और 8 सेकंड हो चुके हैं। गीत मेरे मनमीत में आज का आखिरी गीत होगा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार अर्पना को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन तथा इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का 5वां विमान कल राहत और बचाव सहायता लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कल संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी में जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी आ रहे हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन सकते हैं 100.1 MHz पर। मैं हूँ आज अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ अल्फाज। तेरी मेरी जिंदगी का सफर एक हसीन गीत जैसा है, तेरी मेरी जिंदगी का सफर एक हसीन गीत जैसा है, जिसमें हर मोड़ पर प्यार का एक नया संगीत बरसता है।

गुनगुनाओ तो एक नया एहसास जाग उठता है, तुम गुनगुनाओ तो एक नया एहसास जाग उठता है। तेरी मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा एक साज पर बन उठता है।

रुक जाए वक्त वहीं जब तुम आंखें झुकाती हो, रुक जाए वक्त वहीं जब तुम आंखें झुकाती हो, अपनी पलकों के साए में तुम पूरी कायनात छुपाती हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लोग लिखते होंगे किताबों में मोहब्बत के किस्से, लोग लिखते होंगे किताबों में मोहब्बत के किस्से, हमारी कहानी तो जमाने की रग रग में बसी है।

झुक जाए सारा जहां जिसके आगे, झुक जाए ये सारा जहां जिसके आगे, मेरी मोहब्बत तो बस तेरी एक नजर के आगे हारना चाहती है।

मगर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी हम लौटेंगे कुछ ही समय बाद 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने के साथ, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि इस शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और संबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की पांचवी उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विनाशकारी बाढ़ से 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। कार्यक्रम वही आपको मनपसंद जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, आग लगा दो चिलमन में, न ये झांके न वो झांके।

उनके हाथों में मेहंदी लगाने का फायदा तो ये हुआ, उनके हाथों में मेहंदी लगाने का फायदा तो ये हुआ कि रात भर उनके चेहरे से हम जुल्फे हटाते रहे।

कभी कभी लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी थी, कभी कभी लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी थी, मगर इस दिल की जिद के आगे मेरी चली ही कहाँ थी।

तुम कहो कुछ हम कहें, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। धड़कने धड़कने दिल की सुनती रहें और वक्त धीरे धीरे ढलता रहे।

तुम्हें देखा तो लगा जैसे फूलों को मुस्कुराने का सलीका आ गया। तुम्हें देखा तो लगा जैसे फूलों को मुस्कुराने का सलीका आ

बहुत दिनों से दबा रखी है जो धड़कने सीने में, बहुत दिनों से जो दबा रखी हैं धड़कने सीने में, आज उन अनकहे जज्बातों को चलो गीतों से सजाते हैं।

तुम गुजरते हो जहाँ से वो राहें भी गुनगुनाती हैं, है लगता है कायनात की हर खूबसूरती तुम पर ही आकर रुकी हो।

अंग्रेजी में समाचार और 2:10 से फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और समयबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। भारत से नेपाल पहुंची 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम की प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविली शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 5 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब खत कहाँ लिखता है कोई, वो जमाना तो गुजर गया। अब खत कहाँ लिखता है कोई, वो जमाना तो गुजर गया। कागज पर जज्बात सजाने का वो फसाना तो गुजर गया।

दिशा टूटे तो उसकी झटक को पूरी दुनिया सुनती है, मगर जब दिल टूटता है तो बस एक बहता हुआ आंसू ही बहुत कुछ कह जाता है।

कहते तो हैं कि फासले कभी मोहब्बत को कम नहीं करते, तुम लाख दूर रहो पर रहोगे तो दिल के पास ही, दुआ है कि वक्त के साथ तुम बदलना नहीं।

एक कांच का टुकड़ा भी चुभता है तो दर्द होता है, एक कांच का टुकड़ा भी चुभता है तो दर्द होता है। तुमने तो जज्बातों से भरा पूरा दिल ही बिखेर दिया। कहो तो

दोस्तों अब समय है हमारे भी जाने का और स्टूडियो में आ चुके हैं भारती अगला कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम होगा हमराही जो 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्टी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकिन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री डी वेवर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविले शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। आर्थिक और वित्तीय मामलों के यूरोपीय आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोस्की के साथ बातचीत में दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितम्बर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए 4 सितंबर की सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री नारायण ने कहा कि EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आप सबका भी मैं स्वागत करती हूं कार्यक्रम में। किसी खास इंसान का जिंदगी में आना कभी कभी सचमुच रोशनी जैसा होता है। उसके होने से वही रास्ते आसान लगने लगते हैं, वही रातें खूबसूरत और वही जिंदगी थोड़ी ज्यादा अपनी लगती है।

रात के इस सन्नाटे में कभी कभी दिल को सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि कोई अपना है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप वही है जहां साथ पाने की खुशी से ज्यादा किसी के साथ होने का सुकून महसूस हो।

दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, किसी खास इंसान की याद मन में किसी कोने में चुपचाप चलती रहती है और रात होते ही वही यादें और गहरी हो जाती हैं, जैसे खामोशी में कोई अपना धीरे से दिल को पुकार रहा हो।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। कुछ रिश्तों में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल खुद रास्ता ढूंढ लेता है। सच्ची मोहब्बत दूरी से कम नहीं होती, बल्कि कभी कभी दूरियां ही एहसास करा देती हैं कि कोई हमारे लिए कितना खास है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुदरत और मोहब्बत का रिश्ता भी कितना सुंदर है। पहाड़, हवा, बारिश और चांदनी, सब कुछ तब और खूबसूरत लगता है जब दिल में किसी की याद का उजाला हो।

दिल को खुश रखने के लिए हमेशा बड़ी खुशियों की जरूरत नहीं होती है। कभी किसी की मुस्कान, कभी कोई पुरानी याद और कभी साथ बिताया एक छोटा सा पल ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। बस दिल में प्रेम का संगीत बना रहता है।

रिश्तों में रूठना भी कभी कभी प्यार का हिस्सा होता है, लेकिन मनाने वाला दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। जहां अहंकार छोटा और रिश्ता बड़ा हो, वहां छोटी सी नाराजगी भी प्यार को और गहरा बना देती है।

0: कुछ सपने आंखें खुलने के बाद भी दिल में बने रहते हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है, एक खूबसूरत एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है शायद, मगर महसूस किया जा सकता है।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं।
1: मैंने

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

उदासी की रातों में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे की जो उसे भीतर से संभाल सके। कोई पुरानी याद, कोई प्यारा चेहरा या किसी अपने की आवाज, कभी कभी इतना ही दिल को फिर से मुस्कुराने के लिए काफी होता है।

हवाएं खामोश हैं और यादों का कारवां धीरे धीरे दिल के करीब आ रहा है। आप जहां भी हैं, जिसे किसी को याद आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है, उस एहसास को आज की इस रात संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से जिए जाते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। छोड़ के जा रही हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय निर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। भारत से नेपाल पहुंची 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की पांचवी उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच फंसे लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भोटेकोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता हैं। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वाड डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री डी वेवर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिनमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए 4 सितंबर की सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हों। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छा संबंध बने। उन्होंने तर्क दिया कि बेहतर संबंध व्यापार के लिए भी लाभकारी होंगे। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए, जबकि इंडोनेशिया की पारी 18 ओवर 3 गेंदों में सिर्फ 49 रन पर सिमट गई। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। भारत पहली बार हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित की जाएगी। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की नई दिल्ली फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और उनके साथियों ने। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार ओपी नायर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो

डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म मौसम से, भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म आखिरी गुलामी से आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में, संगीतकार बप्पी लहरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आगोशुला से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन।

समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर

0: आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार ये यात्रा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल और तिब्बत में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भोटेकोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता हैं। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरांग काउंटी में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। उन्होंने तर्क दिया कि बेहतर संबंध व्यापार के लिए भी लाभकारी होंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच यूएई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivers for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the

0: प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। कृष्ण प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे संबंधों में विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ भाव सबसे बड़ा धन है। आज अपने भीतर प्रेम और करुणा जगाइए और किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी जरूर बांटिए।
1: यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

प्रकृति का यही संदेश है, कोई रात हमेशा नहीं रहती, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसलिए बीती हुई परेशानियों को वहीं छोड़ दीजिए और आज को एक नई उम्मीद के साथ अपनाइए। हर सुबह जिंदगी हमें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है।

0: लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं

0: सुबह की पहली किरण जैसे धरती को जगाती है, वैसे ही हमारे भीतर का विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कदम छोटे हों या बड़े, जरूरी ये है कि वे रुके नहीं। आज का दिन कल से बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाइए।
1: उठ सबके कदम, देखो रंग।

जब प्रकृति जागती है तो उसकी हर आवाज जीवन को उत्साह बन जाती है। कोयल की मीठी बोली हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द भी किसी के दिन को सुंदर बना सकते हैं। आज कोशिश करें कि आपकी आवाज में मिठास और आपके व्यवहार में अपनापन हो।